हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण

0: के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का यह तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे सवेरे 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती में आज आप सुनेंगे 6:50 पर। सदाबहार नगमों का समय रहेगा सवेरे 7:00 और 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सवेरे 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से। सवेरे 8:30 का समय रहेगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का, जिसे आप सुन सकेंगे हमारे दोनों ही चैनल यानी FM 101.9 MHz रेडियो लेक सिटी पर और साथ ही आकाशवाणी उदयपुर पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:30 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। राजस्थानी गीतों से सजा कार्यक्रम गोखड़ा का समय रहेगा सवेरे 11 बजे और 11:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

महिलाएं सुनेगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। 1:45 का समय रहेगा फिल्म संगीत और साथ ही देंगे विकास चर्चा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृषि भाई सुन सकेंगे कृषि जगत का कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दोपहर 3:00 और 3:05 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण यहीं समाप्त होंगे। संध्याकालीन सभा का आगाज होगा शाम 5:00 कार्यक्रम युवाणी के साथ। शाम 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम को 6:05 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30, जिले की चिट्ठी 6:40 और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम खेती और घर आप सुनेंगे शाम को 7:00। रात्रि 8:00 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8:45 पर समाचार संध्या News@9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00। साथ ही सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। इसी के साथ 11:10 पर हमारी दूसरी सभा का समापन भी होगा। तो ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती में आज। प्रस्तुत करता है नारायण लाल आमेटा।
1: खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहन ने नानू भैरो राम राम सा। देखो सा किसान भाया अणी कार्यक्रम में आज आपा जानकारी लाया कि कुष्मांड कुलरी जो सब्जियां हैं वणा ने कद्दू वर्गीय सब्जियां रे नामों भी जान्यो जावे। अणी कुल में देखो लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब आवे है। और कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है वे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन अणारो प्रमुख स्रोत भी मानी जावे है। अणी वर्गीय सब्जियां में देखो अणी टाइम पे आपा देखा तो नरेहारा जो कीट है भी पाया जावे है। तो कुष्मांड कुलरी सब्जियां में जो कीट नियंत्रण है वो कणी प्रकार कर सका यह बात आपा करा हाँ। जटे देखो आपा बात करा लाल मकड़ी या पचे बरूथी री तो अंडी शिशु और व्यस्क की दो ही प्रकार की अवस्था जो है ये अपने पौधा ने हानि पहुंचावे है। ये मकड़ी पत्यारी निचली सतह पे लागे है और रस चूसने देखो नुकसान पहुंचावे। अणु पत्तियां पर सफेद धब्बा बन जावे जो बाद में भूरा रंगरा बह जावे और अपना वणाया लगा रेशमी जालू पत्तियां ने ढांक लेवे है। और हवारे चालवाओं देखो जमीन रे मिट्टी रे कण रे जाल पर लागने वणने सघन वणई देवे जणु की पत्तियां में प्रकाश री क्रिया निभे और वणु प्रभावित वहीने पत्तियां जो है वे गिर जावे और फूल और फल दो ही कम लागे है तथा उत्पादन में भी देखो कमी देखी जावे। तो अंडे नियंत्रण रे वाते देखो किसान भाई जो है इथियान 50 EC 0.6 मिलीलीटर या पचे प्रोपार जाइट 57 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दर में गोल वणे छिड़काव करे तो लाल मकड़ी या पचे जो बरूथी है वंडो नियंत्रण कर सके। जटे देखो आपा फल मक्खी री अगर आपा बात करा तो यह प्रौढ़ तथा लट दोहरी अवस्था में देखो पौधा ने अधिक नुकसान पहुंचावे। प्रौढ़ मक्खी अपना अंड निपेक्षक रे मदद हूँ फला में छेद करने गुदा में अंडा दे देवे तथा बाणे आवा में अणा छेद में एक लसदार पदार्थ वापस बंद कर दे। अंडाओं 3-5 दिन में लट जो है वह वन ने फूला रे अंदर ही अंदर खाते रहे जणु की अपना फल जो है भी सड़वा लागे और गिर जावे है। अंडे नियंत्रण रे वाते जो काणा फल है वणा ने तोड़ने भूमि में गहरा गाड़ ने नष्ट कर देना चाहे और मेलेथियन 50 EC या 50 डाई मिथ्योट

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तेईस जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं। समय हुआ है सदाबहार नगमों का। सदाबहार नगमों में सबसे पहले आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये खूबसूरत सा गीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये खूबसूरत सा गीत। और अगला गीत हमने चुना है फिल्म हीना से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
1: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
0: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यहीं आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
0: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।

फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी किशोर कुमार की। अगला गीत हमने चुना है फिल्म देश परदेश से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की।

अनुरोध फिल्म से अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
6: और दूसरा?
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर, UPI से।
6: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है।
8: इसी के साथ सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज, आकाशवाणी दिल्ली से।
9: घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
11: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने

0: श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो, और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको

0: अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
2: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
4: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
5: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है।

0: रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
5: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
2: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee, JPC, on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC Chairperson P.P. Chaudhary said India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
6: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि
7: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द कमेटी आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अलोंग विद हिम एनके सिंह हु इज एन इकोनॉमिस्ट एंड गुलाम नबी आजाद हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर विद वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वर पार्ट ऑफ इट दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड विधानसभा शुड बी हेल्ड इन द कंट्री
6: प्रदेश में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने चाहिए।

0: हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, कल की थकान को पीछे छोड़ जाती है। मुस्कुराकर शुरू करो अपना हर एक दिन, क्योंकि खुशियाँ भी आपके पास ही आती है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलिए खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनीता, और मेरे साथ हैं
0: आंचल।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और साथ ही श्रोताओं को बता दें आंचल की आज मिड वीक वाइब्स में क्या है खास।
0: बिल्कुल, आज की मिड वीक वाइब्स में हम बात करेंगे टुडेज डायरी में विश्व मधुमक्खी दिवस पर, साथ ही देंगे सुमित्रा नंदन पंत जयंती की जानकारी, आईपीएल की अपडेट होगी और स्थानीय खबरों की जानकारी हम देंगे। साथ ही प्रेरणा क्षेत्र में हम बात करेंगे गीता गोपीनाथ की,
1: और रोचक तत्व में हम बात करेंगे रेडियो प्रसारण सेवाओं के इतिहास की। और आज है आंचल बुधवार, तो हम अपने श्रोताओं को भी हमसे जुड़ने का मौका देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए श्रोता संवाद में। और आपको हमें बताना होगा कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, रेडियो से जुड़ी कोई जानकारी हो या रेडियो आप कितने सालों से सुन रहे हैं, रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है, ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 9462697568 पर, और हम आपके मैसेज पढ़कर सुनाएंगे 9:10 पर।
0: बिल्कुल,

0: अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रौदन। ये पंक्तियां लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो हिंदी साहित्य के विलक्षण युग प्रवर्तक और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत। 20 मई वर्ष 1900 में कोसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त। स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सरपेली पगडंडिया, बांझ, बुराश और चीड़ के पेड़ों की बयार और नीचे दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी और उसके ऊपर हिमालय के उत्तंग शिखरों और दादी से सुनी कहानियाँ और शाम की आरती की स्वर लहरियों ने इन्हें बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। और यही वजह थी कि इनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, मानवता और आध्यात्मिकता का सुंदर चित्रण मिलता था।
0: सुमित्रा नंदन पंत ने 7 साल की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में प्रकृति के अलावा नारी चेतना, ग्रामीण जीवन और इनकी विसंगियता का मार्मिक चित्रण भी देखने को मिलता है। इनका लेखन इतना प्रभावशाली था कि 18 साल की उम्र में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट इन्होंने पहचान बनाई और लेखन शुरू कर दिया था। इनका जो लेखन था वो 3 चरणों में था। पहला था छायावाद, जिसमें इनकी रचना है पल्लव, इसको छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी कृतियाँ थी उच्छ्वास, ग्रंथि वीणा और गुंजन।
1: बिल्कुल, इनके पुरस्कारों की अगर बात करें तो वर्ष 1968 में इन्हें इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें अलंकृत किया गया। इसके अलावा इन्हें पद्मभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी नवाजा गया।
0: और छायावाद के अलावा प्रगतिवादी चरण में समाजवाद और यथार्थ का काल भी रहा है, जिसमें वे प्रकृति से निकलकर धरती के यथार्थ, किसानों और मजदूरों की पीड़ा से जुड़े। इसके बाद जीवन के अंतिम चरण में पंत जी की मुलाकात महर्षि अरविंद के पौंडिचेरी में हुई थी और उनसे प्रभावित होकर उनकी कविताओं में आध्यात्मिकता, चेतना और विश्व कल्याण के स्वर गूंजने लगे थे।
1: छायावाद के सुंदर दीप जिनसे जग उजियारा था, हिंदी साहित्य के आकाश में पंत जी सितारा था।
0: पंत जी आकाशवाणी के मुख्य परामर्शदाता के पद पर भी रहे। 28 दिसंबर 1977 को ये दुनिया छोड़ गए।
1: हिंदी साहित्य में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

0: और अब बात करते हैं स्थानीय सूचनाओं की। तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से बागोर की हवेली स्थित ग्राफिक स्टूडियो में मंगलवार से 7 दिवसीय एचिंग और सेरीग्राफी कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में उदयपुर और नाद्वारा के विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यशाला का समय है हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबर में एक खबर ये भी है कि लेक सिटी में दूसरी बार राजस्थान ट्रेवल ट्रेड फेयर होगा। इस बार यह आयोजन अगले साल 9, 10 और 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें 250 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे और देश भर से 1500 से ज़्यादा ट्रेवल एजेंट हिस्सा लेंगे। फेयर में शामिल होने वाले देश भर के ट्रेवल एजेंट यहाँ की शाही शादियों, मेहमान नवाजी, हेरिटेज और पर्यटन स्थलों से रूबरू होंगे। इससे विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

0: और आंचल देखो इस ट्यून के बजते ही हमारी श्रोता समझ जाते हैं कि अब हम उन्हें आईपीएल की जानकारी देने वाले हैं, तो बात करेंगे कल के मैच की।
1: बिल्कुल अनीता, कल का जो मुकाबला था जयपुर में घरेलू मैदान पर मिली सीजन की पहली जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत कर ली है। मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 7 विकेट से मात दी है। यह रॉयल्स की लीग स्टेज के 13 मैचों में से 7वीं जीत रही और वह अंक तालिका में 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले खेलते हुए लखनऊ ने 220 रन बनाए थे, राजस्थान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को

0: पूरा कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी ने 93 रनों की पारी खेली और पारी में 7 चौके और 10 छक्के जमाए।
1: और आज के मैच की बात करें तो आईपीएल अब अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। आज का मैच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ईडन गार्डन्स में हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा और आज देखने वाली बात यह रहेगी कि जीत किसके नाम होती है।

0: अनिता, कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करें तो आज है 20 मई और आज के दिन को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में। यह दिन मधुमक्खियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस पृथ्वी पर कई तरह के छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं और हर किसी का अपना महत्व होता है, खासियत होती है। एक छोटा सा कीट मधुमक्खी जिसका बनाया हुआ शहद हम सभी ने चखा होगा, आपने भी देखा होगा, चखा भी होगा। तो आज का दिन जो 20 मई का दुनिया भर में मनाया जाता है, और 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन स्लोवेनिया के एंटोना जांसा का जन्मदिन है। इन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन का प्रणेता भी माना जाता है। उन्होंने मधुमक्खियों की क्षमताओं और उनकी कड़ी मेहनत को सराहना की और दुनिया के सामने की।
0: बिल्कुल, मधुमक्खियां फूलों से पराग एकत्र करके एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाती है, जिससे फल और बीज बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। लगभग 70-75% फसलें भी मधुमक्खियों पर ही निर्भर होती है। ये जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा शहद, मोम और अन्य उपयोगी पदार्थ हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होते हैं।
1: और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में की गई थी और 20 मई 2018 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था।
0: वनों की कटाई, फूलों की कमी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशकों और रसायनों के अधिक उपयोग से आज इनका जीवन संकट में है।
1: कृषि क्षेत्र में मधुमक्खियां फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में अरबों डॉलर का योगदान देती हैं, और हर साल इस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं। यह थीम उन जीवों की रक्षा करने, उनके प्राकृतिक आवास को बचाने और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर देती है।
0: मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो खाद्य उत्पादन और प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हम सभी को मिलकर मधुमक्खियों की रक्षा करनी और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करने हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को बचाना मानव जीवन को बचाना है।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। रास्ते कठिन हो पर हार मत मानो, हर दिन को नई उम्मीद से पहचानो, कदम उठाओ और हिम्मत जगाओ, सपनों की ऊंचाई तक खुद को ले जाओ।
1: हमारे देश में वाकई में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया और एक मुकाम हासिल किया, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। उन्हीं में से एक हैं भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो वैश्विक अर्थशास्त्र और नीति निर्धारण के क्षेत्र में दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और बाद में पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी।
0: बिल्कुल, इनका जन्म भारत में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत से ही प्राप्त की। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थी और अर्थशास्त्र विषय में इनकी विशेष रुचि रही
1: और उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया।

0: इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद अमेरिका में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। पीएचडी के बाद 2005 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी और 2010 में वे वहां प्रोफेसर बन गई। हार्वर्ड में अर्थशास्त्र विभाग के इतिहास में स्थायी प्रोफेसर बनने वाली तीसरी महिला थी।
1: बिल्कुल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब गीता गोपीनाथ ने अपनी नीतियों और सुझाव से कई देशों की दिशाओं दिखाई। इनके कार्यों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: 2019 में उन्हें आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली और रघुराम राजन के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी। कोरोना महामारी के बाद इन्होंने बहुत सारे अपने काम किए।
1: बिल्कुल, यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात रही है। गीता गोपीनाथ के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनके सम्मान की बात करें तो भारत सरकार का उच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से ये सम्मानित है। इसके अलावा टॉप ग्लोबल थिंकर और फाइनेंशियल टाइम्स से भी ये अलंकृत है।
0: वैश्विक आर्थिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण के क्षेत्र में गीता गोपीनाथ का योगदान ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रहा। उन्होंने न केवल दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शीर्ष पदों पर रहकर वैश्विक आर्थिक संगठनों का समाधान किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनके सिद्धांतों को भी एक नई दिशा दी।
1: गीता गोपीनाथ ने अपने ज्ञान, मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और लगन आवश्यक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये आज लाखों युवाओं और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
0: 2022 में उनकी क्षमताओं को देखते हुए आईएमएफ ने उन्हें प्रथम उप प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया। 2025 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। एक वैश्विक अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का शोध पूरी दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक रहा। वर्तमान में आईएमएफ से विदा लेने के बाद वो वापस एकेडमिक क्षेत्र में लौट आईं और अभी वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित ग्रेगरी एंड अनिया कॉफी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

0: तो हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि आज श्रोता संवाद में आपको हमें बताना होगा कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, रेडियो से जुड़ी जानकारी या रेडियो आप कितने सालों से सुन रहे हैं, रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है, ये आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 9462697568 पर, और आपके मैसेज हम पढ़ेंगे 9:10 पर।
1: इसी के साथ अनिता, घड़ी की ओर देखे तो समय हुआ हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 1 एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा से

0: घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल चार बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं के प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा दो पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म

0: इनर बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में।
2: और हम श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज है बुधवार और हम श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका दे रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो श्रोताओं को ये बताना है कि आज का जो नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम है उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं या अपने रेडियो सुनने के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकते हैं, रेडियो के इतिहास की जानकारी अगर देना चाहते हैं तो कीजिए मैसेज 9462697568 पर।
1: बिल्कुल,

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, जिसे सुनना बहुत ही आसान हो चुका है। रेडियो को अब आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं और अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स आप सुनते हैं अपने मोबाइल पर भी। अब हर समय रेडियो की ज़रूरत नहीं है कि जैसे पहले के समय में हमेशा रेडियो कभी साइकिल पर कभी स्कूटर पर हुआ करता था, अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज रेडियो एंटीना और ट्रांसमीटर से आगे निकल चुका है। एक समय था जब लोग हर वक्त ट्रांजिस्टर को अपने साथ रखते थे, है ना, आपने भी देखा होगा अपने बचपन में।
1: बिल्कुल।
0: तो आज रोचक तथ्य में हम बात करेंगे रेडियो प्रसारण सेवाओं के इतिहास की।
1: बिल्कुल, रेडियो प्रसारण सेवा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसने सुरक्षा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाने में क्रांति ला दी। रेडियो की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई जब वैज्ञानिकों ने बिना तार यानी वायरलेस संदेश भेजने की तकनीक विकसित की। वर्ष 1895 में पहली बार जी मार्कोनी ने सफलतापूर्वक वायरलेस संकेत भेजे, यहीं से रेडियो के आविष्कार की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने समुद्र के पार भी संदेश भेजने में सफलता पाई है।
0: रेडियो प्रसारण का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास में संचार क्रांति का एक स्वर्णिम अध्याय है। रेडियो ने दुनिया को एक सूत्र में पिरोने और सूचनाओं को तुरंत सभी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पहले रेडियो प्रसारण की अगर बात करें तो वर्ष 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। इससे समाचार और चुनाव परिणाम सुनाए गए थे। और बात करें भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की तो वर्ष 1927 में रेडियो सेवा शुरू हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई।
0: पहले विश्व युद्ध के बाद रेडियो आम जनता के मनोरंजन का साधन बना। पहला कॉमर्शियल स्टेशन अमेरिका के पिट्सबर्ग में KDKA नाम से दुनिया का पहला व्यावसायिक रेडियो स्टेशन शुरू हुआ।
1: 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी की स्थापना हुई और 1957 में इस आकाशवाणी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। रेडियो ने स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: 1922 में BBC की शुरुआत हुई जिसने दुनिया भर में समाचार और सूचना प्रसारण के ऊंचे मानक स्थापित किए। 1930 में निजी कंपनियों के बंद होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत की और इस 1957 में आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम दिया गया।
1: इस प्रकार रेडियो की शुरुआत एक छोटी वैज्ञानिक खोज से हुई जो आज पूरे विश्व में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। रेडियो ने दुनिया को जोड़ा और आवाज को हर जगह पहुंचाया।
0: आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुचिल्लापल्ली और लखनऊ। विविध भारती की शुरुआत 1957 में हुई थी जब श्रीलंका के रेडियो सिलोन में फिल्मी गीतों में भारतीय श्रोताओं को दीवाना बनाया। तब उसके बाद मुकाबले AIR ने विविध भारती शुरू की जिसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं FM की शुरुआत की तो 1977 में चेन्नई में पहला FM रेडियो सेवा शुरू की गई। उसके बाद 2000 के दशक में सरकार ने निजी कंपनियों को FM लाइसेंस दिए और कई सारे प्राइवेट FM शुरू हुए। FM चैनल आज के हर उम्र की पहली पसंद बना हुआ है। आज डिजिटल दौर के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के लिए रेडियो आज भी सूचना और मनोरंजन का एक बेहतरीन साथी बना हुआ है।

0: अनिता श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी। इन्होंने लिखा है, रेडियो सुनना मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सन 2000 से क्रिकेट कमेंट्री के साथ धीरे धीरे आकाशवाणी उदयपुर से इन्हें जुड़ने का मौका मिला और सुनना पूरा प्रतिदिन इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आज के डिजिटल युग में भी इनको सुनने का मजा कुछ और है, क्योंकि न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो अवेलेबल है।
1: बिल्कुल सही बात है, और उसके जरिए आप मोबाइल के जरिए कभी भी आप रेडियो सुन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स का आनंद ले सकते हैं। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है कमल सुहालका जी का, और इन्होंने लिखा है कि मधुमक्खी से संबंधित जो जानकारी दी वो इन्हें काफ़ी नई लगी और बहुत अच्छी लगी। इससे शहद प्राप्त होता है जो हम भी उसका स्वाद चखते हैं। सुप्रभात के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है। तो कमल सुहालका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को इतने ध्यान से सुनते हैं और हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: चलिए श्रोता संवाद में एक और हम तक मैसेज पहुंचा है सुशील यादव, रेणु यादव का, और ये लिखते हैं कि हमें हमेशा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, रेडियो सुनना हमें विरासत में मिला है और ये रेडियो हमें बहुत कुछ सिखाता है। रेडियो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें सूचना, ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, कला, संगीत, सांस्कृतिक, मनोरंजन, ये सभी तरह की जानकारियाँ हमें रेडियो के माध्यम से ही मिलती हैं। हमारी दिनचर्या की शुरुआत भी रेडियो से ही होती है और हमें रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपके सभी प्रोग्राम्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुशील यादव जी, रेणु यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल, और एक मैसेज हम तक आया है देवर्ष खत्री जो कि 8 वर्ष के हैं, इनका मैसेज है कि आपके द्वारा समय समय पर दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है।
0: और एक और मैसेज हम तक पहुंचा है और इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग के साथ इनका जो मैसेज हम तक पहुंचा है और उन्होंने लिखा है कि हमें सारे प्रोग्राम्स आपके अच्छे लगते हैं, आज का प्रोग्राम भी हमें बहुत अच्छा लगा है और ये संदेश हम तक पहुंचा है किरण कुमावत जी का, तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना और हमें

0: मैसेज की है। और अब चलते चलते अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। तो आज के प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
1: आंचल।
0: दीजिए इजाजत, नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
3: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
3: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
3: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
3: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
3: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
3: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
3: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
3: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
3: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
3: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ

0: पाई जाती जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओ, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
6: pets are so lovely.
3: Right, Soha.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell?
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
7: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
6: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. there once was a crow.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ

0: लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ, अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया।

0: क्या होगा?
1: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
0: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त आंचल। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रकृति की, साथ ही फूलों और मधुमक्खियों की जानकारी हम देंगे और सुनेंगे कुछ गीत।

फूलों की तरह मुस्कुराना सीख लो, खुशबू बनकर दिलों में बसना सीख लो, जिंदगी छोटी है जनाब, हर पल को महकाना सीख लो।

फूलों के शहर में घर अपना, और घर अपना किसका, मतलब मधुमक्खियों का, तितलियों का और छोटे छोटे जीवों का। बात करते हैं मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियाँ प्रकृति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीव है जो न केवल शहद बनाती है बल्कि पौधों के परागण में भी अहम भूमिका निभाती है। आज के समय में मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है जिससे पर्यावरण और कृषि दोनों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की, क्योंकि आज है 20 मई और आज ही के दिन हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पापा।
6: हम्म।
5: लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ।
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।

फूलों के संग भंवरे, भंवरे के संग और साथी, बिल्कुल प्रकृति का क्रम ऐसा ही है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आधारित है। मधुमक्खियाँ फूलों से पराग एकत्र करके एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुँचाती है, जिससे फल और बीज बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। लगभग 70-75% फसलें भी मधुमक्खियों पर ही निर्भर होती है। ये जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा शहद, मोम और अन्य उपयोगी पदार्थ भी हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होते हैं।

0: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात करें प्रकृति से जुड़ी चीज़ों की, उसमें हम बात करें मधुमक्खियों की, और गीत सुन रहे हैं कुछ प्राकृतिक।
1: अब आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
2: रेडियो लेक सिटी, लेक
1: सिटी। हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यही आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
3: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
1: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी।

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पंछी नदियाँ पवन के झोंकी, कोई सरहद इन्हें ना रोकी। लेकिन वनों की कटाई, फूलों की कमी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशकों और रसायनों के अधिक उपयोग से आज इनका जीवन संकट में है। इनके संकट को बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास हम करें तो इनका जीवन बचाया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और अधिकतर फूलों वाले पौधे अगर लगाएंगे तो मधुमक्खियों को बचाने में सक्सेस रहेंगे। रसायनों का कम उपयोग करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना, ये सभी उनके जीवन को बचाने में सहायक है।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Akashwadi at 90.
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति और उससे जुड़े जीव जंतुओं की और सुन रहे हैं कुछ ऐसे ही नगमे। हम बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो खाद्य उत्पादन और प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, इनकी रक्षा करनी है, इनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयासरत रहना है, क्योंकि मधुमक्खियों को बचाना मानव जीवन को बचाना है।

प्यार मिले तो रुक जाए, फूलों की तरह आप भी खिलते रहें, हर गम को हंसकर भूलते रहें, जिंदगी की राहों में चाहे जो हो बस खुशियों की खुशबू घोलते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो दोस्त आंचल को।

आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत आरजे आंचल के साथ। ये है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है राजस्थान की सौंधी मिट्टी लिए कार्यक्रम गोखड़ा। गोखड़ा हुनवावरा सगला भाई बहना ने रचाख्यानी रो राम राम सा तो चला राजस्थानी गीतारी और हुनो सा यो प्यारो प्यारो मिठो मिठो सो गीत।

अबारा पुणियो ध्रुव घानेकर और मामे खारी आवाज में यो मिठो मिठो सो प्यारो प्यारो सो गीत आगलो गीत है। एक बार फिर मामे खां और अनिबार वणी रसाद दे रहा है प्रियंका बारवे।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
6: और दूसरा?
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर, UPI से।
6: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

आप सुन रहे हो राजस्थानी लोक गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा। अबे आप होगा मामे खारी आवाज में यो आगलो लोक गीत।

தரக்கிறது தரக்கிறது தரக்கிறது.

अब सा यो आगलो लोक गीत आणि में आवाज है ममता सिंगरी।

नहीं, राम राम सा। अभी आपने आनंद लिया राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम गोखड़ा में, प्रसारण आकाशवाणी उदयपुर से हो रहा था। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं गजलें। पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:43:40 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत, गजल, पामेल भंडारी मोदी की आवाज़ में।

अभी आपने सुना पामेल भंडारी मोदी की आवाज में ये प्यारा सी गजल। तबले पर साथ थे ओम कुमावत और वायलन पर साथ दे रहे थे जीवन।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गजलें। पेश है ये कार्यक्रम की आखिरी गजल।

सुगम संगीत अभी आपने सुना आकाशवाणी उदयपुर से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं आनंद लीजिए फिल्मी तरानों का। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धड़कन में एक राहत है। बनाए रखिए अपने कान हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र बेहद खास है। आपके साथ इस सफ़र में हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ऋचा ख्यानी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2000 के दशक के कुछ बहुत ही प्यारे और फेमस

गीत। पहला गीत फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत को अपने संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने और इस गीत को लिखा है समीर ने।

चोरी चोरी चुपके चुपके दिल में उतर गए, चोरी चोरी चुपके चुपके दिल में उतर गए, बिना दस्तक दिए ही अपना असर कर गए। हम तो समझते थे अजनबी हो तुम, हम तो समझते थे अजनबी हो तुम, पर तुम तो हमारी धड़कनों का सफ़र बन गए।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मोहब्बतों से। यशराज प्रोडक्शन की इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया था और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। संगीतकार थे जतिन ललित, गीतकार आनंद बख्शी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आपने सुना आपके रेडियो सेट पर। कल हो न हो ये पल मुस्कुरा लो, जो दिल में छुपे हैं अरमान उन्हें सजा लो। जिंदगी का क्या भरोसा दोस्तों, आज प्यार से जी लो, क्योंकि शायद कल हो ना हो।

तुमसे ही सुबह मेरी, तुमसे ही शाम है, तुमसे ही सुबह मेरी, तुमसे ही शाम है, मेरी हर धड़कन पर बस तेरा ही नाम है। अब और क्या कहें इस दिल की कहानी, मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुमसे ही तो है।

ये गीत एक प्यारा सा गीत और बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली फिल्म जब वी मेट से। इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया था मोहित चौहान ने और प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत, रचना थी इरशाद कामिल की। हम सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से 2000 की दशक के कुछ बहुत ही प्यारे और फेमस बॉलीवुड हिट सॉन्ग्स। तेरा मेरा रिश्ता शब्दों में बयां नहीं होता, तेरा मेरा रिश्ता शब्दों में बयां नहीं होता, हर एहसास का कोई नाम नहीं होता। तू साथ है तो दिल को सुकून मिलता है, तू साथ है तो दिल को सुकून मिलता है, वरना ये सफ़र इतना आसान नहीं होता।

आवारापन, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत में आवाज़ थी मुस्तफ़ा जाहिद की। प्रीतम के संगीत से सजे इस गीत को लिखा था सईद कादरी ने। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो दिल, ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो दिल, तेरी बातों का चढ़ा है जैसे कोई खूबसूरत सिलसिला, तेरी बातों का चढ़ा है जैसे कोई खूबसूरत सिलसिला, तेरी नज़रों ने कुछ ऐसा असर कर दिया, तेरी नज़रों ने कुछ ऐसा असर कर दिया, हर धड़कन में बस तेरा ही नाम मिल गया।

0: रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, बॉम्बे जयश्री की गायकी, हरीश जयराज का संगीत और समीर के बोल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से फिल्म संगीत, और अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ संदेशों की ओर। तो आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो, ये फटा है।
6: सुन, कटे फटे हैं पुराने नोट को
7: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: अब आप सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर ढूंढना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप। जी हाँ, NEWSONAIR नाम का ऐप, और इसे करना पड़ेगा अपने मोबाइल पर डाउनलोड। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर हमारे कार्यक्रम सुनना चाहें तो जाएं newsonair.com वेबसाइट पर। न्यूज ऑन AIR पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के देश भर में स्थित सैकड़ों चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग। यहीं आपको मिलेगा आपका पसंदीदा रेडियो चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी। तो सुनना न भूलें, दुनिया में कहीं भी कभी भी आपका अपना रेडियो चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
3: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

चांद भी तेरी खूबसूरती का कायल हो गया, चांद भी तेरी खूबसूरती का कायल हो गया, तभी तो हर रात तेरा जिक्र करने लगा। हम तो पहले ही दिल हार बैठे थे, अब आसमान भी तेरी सिफारिश करने लगा। ये गीत था फिल्म फना से, शान और कैलाश खेर की आवाज़ें, जतिन ललित का संगीत, और इस गीत को गाया था प्रसून जोशी ने, इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी उदयपुर से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर।

सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की जुगलबंदी से ये गीत सजा था। शंकर एहसान लॉय का संगीत और गुलजार के बोल। आप हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। कार्यक्रम में ये आखिरी नगमा लेकर आए हम फिल्म वीर जारा से। लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की जुगलबंदी और संगीत दिया है मदन मोहन ने। गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत आपकी रेडियो सखी ऋचा ख्यानी को, और इंजॉय करते रहिए रेडियो 101.9।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। अब सुनिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी देर में
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के

0: आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। दो पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1150 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसी दोस्त मिलना आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल, क्योंकि संवेदनाओं की सरिता है नारी, सृजन की मधुर कविता है नारी, और उसके होने से ही जग में हर रिश्ते की गरिमा है नारी। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के कार्यक्रम महिला जगत में हम आपका स्वागत करते हैं। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त दीपिका स्वर्णकार,
0: और मैं हूँ आपकी दोस्त खुर्शीदा बानू।
1: तो स्वीकार करें एक बार फिर
0: प्यार भरा नमस्कार। और सखियों, कैसे हो आप? और दीपिका, कैसे हो आप? सखियों की तो हम सुन नहीं सकते हैं, उनको तो हम सुनाने आते हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाने में भी उनको ऐसा ही लगता है कि हमारी प्यारी सखियां हमारे सामने हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जो बात करें कि गर्मी तो है लेकिन सुकून भी है, क्योंकि खुर्शीदा जो है ये समय जो चल रहा है ना, एक आध्यात्मिक समय चल रहा है
1: बिल्कुल।
0: हमारे। कहते हैं कि एक पुरुषोत्तम मास जो है वो अधिक मास अभी चल रहा है, तो मंदिरों में और हर जगह भक्ति भावना अध्यात्म व्रत ये सभी चल रहे हैं, तो महिलाएं हमारी बहनें निश्चित रूप से इसमें व्यस्त तो हैं ही।
1: बिल्कुल, सारी महिलाएं
0: हाँ
1: व्यस्त हैं और ऐसे में हमारे बच्चों की जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो महिलाएं ज़्यादा ही व्यस्त हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: अगर बच्चे हमारे घर में रहते हो तो हमें सुकून नहीं मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को कहीं पर भेजा जाए।
0: बिल्कुल, तो तुम बात कर रही हो समर कैंप की। जी
1: बिल्कुल
0: हाँ बहनों, सृजनात्मक और रचनात्मक रुचि के लिए समर कैंप के बारे में आज हम बात करेंगे कि समर कैंप केवल छुट्टियां बिताने का माध्यम नहीं है, बल्कि नई प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने का एक सुंदर अवसर है।
1: बिल्कुल, समर कैंप बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास और नए कौशल सीखने का एक बेहतरीन जरिया है। 2026 की गर्मियों के लिए कई तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन समर कैंप उपलब्ध हैं, जो
0: बिल्कुल
1: पेंटिंग से लेकर रोबोटिक्स तक की गतिविधियां पेश करते हैं।
0: बिल्कुल। और खुशी था हम बात करते हैं समर कैंप की, कि कई बार ये सोचते हैं कि इतने से दिनों में बच्चा क्या सीख जाएगा, लेकिन बच्चे के अंदर जिस तरह की परिवर्तन आते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या है कि रचनात्मकता बढ़ती है बच्चे में, अपनी प्रतिभा वो पहचानता है ना, और सबसे बड़ी बात उसको कुछ न कुछ काम मिलता है और तनाव उसका कम
1: और
0: होता
1: होता
0: है।
1: है ना कि हमें पता ही नहीं रहता है कि उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल
1: उसका पता कैसे चलेगा, तो इसलिए जो अलग अलग सेटअप्स हैं
0: बिल्कुल
1: उनके अंदर उन्हें हमें डालना चाहिए ताकि बच्चे की रुचि भी हमें पता चले। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, कई बार हम सोचते हैं ना दीपिका कि जो हमारे कुछ सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते होते हैं, हम बच्चों पर डाल देते हैं
0: डाल
1: कि
0: देते
1: बच्चा
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: कि तुम
1: करेगा,
0: ये सीखो।
1: लेकिन
0: हाँ
1: है ना वो नहीं होता है, क्योंकि लेकिन बच्चे की रुचि बहुत अलग ही होती है, तो वो रुचि कैसे पता चलेगी जब हम उन्हें इन कैंप्स में ज्वाइन करवाएंगे, ताकि बच्चे की रुचि का हमें पता चले और अगर बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है तो हम उसे वही चीज ज्वाइन करवाएं ताकि
0: बिल्कुल
1: वो उसके आगे के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो।
0: बिल्कुल। और आज के समय में जहाँ पर मोबाइल और सोशल मीडिया ने बच्चों के मानसिकता को एक बार मतलब खींच लिया है अपनी, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि कल्पना शक्ति विकसित हो बच्चे में, विचार आवें और नया कुछ सीखने का सोच बने, समस्या का समाधान भी वो एक रचनात्मक तरीके से कर सके। और अगर वो कुछ एडिशनल चीज़ें सीखता है खुर्शीदा, तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है।
1: रचनात्मकता कला और शिल्प के बारे में अगर बात हम करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि चित्रकला और पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं।
0: बिल्कुल
1: मधुबनी पेंटिंग्स, कैनवास पेंटिंग, स्केचिंग और वाटर कलर कार्यशालाएं हम बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और साथ ही साथ अगर मिट्टी से लगाव बच्चा रखता है तो हस्तशिल्प कला बहुत अच्छी है, कि मिट्टी के बर्तन बनाना, क्लो मॉडलिंग और कबाड़ से जुगाड़ जैसी रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों को जोड़ सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जहाँ तक खुर्शीदा ने अभी अलग अलग चित्रकला के नाम लिए बहनों, तो ये क्या समझते हो आप, ये कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, बच्चा लोक कला, लोकगीत, नृत्य, भारतीय संस्कृति आदि से जुड़ता है ना। सीखने का जो समर कैंप है वो सीखने और मनोरंजन का एक सुंदर संगम कह सकते हैं, और सीखो और खेलों की भावना से वो बच्चों को सिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ हम बच्चों को जोड़ सकते हैं कि प्रदर्शन कला को लेकर थिएटर्स और एक्टिंग अच्छा विकल्प है मेरे ख्याल से,
0: बिल्कुल
1: जैसा कि तुमने बता ही दिया कि संगीत और नृत्य भी है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: गायन में भी बच्चा आगे जा सकता है। और अब हम भी आगे चलते हैं लेकिन मेरे अंदाज में,
0: बिल्कुल
1: मोहब्बत की भी देखें कैसी अजब सी कहानी है, जहर पिया था मीरा ने पर दुनिया राधा की दीवानी है।
0: वाह वाह।

0: दीपिका, गीत सुना कैसा लगा तुम्हें?
1: बहुत बहुत प्यारा गीत,
0: मजा
1: क्योंकि
0: आया।
1: बिल्कुल खो गए
0: वो
1: थे
0: जो
1: एक तरह
0: तुम
1: से
0: ऐसे खो चुकी थी अंदर, तो मुझे लगा कि मुझे दीपिका
1: जगाना
0: को जगाना
1: चाहिए।
0: चाहिए। तो दीपिका जागो और हम
1: बिल्कुल
0: सखियों को लेकर चलते हैं आगे, लेकर चले कुछ नए विषय की ओर। हम हमेशा सस्पेंस रखते हैं अपने सखियों के लिए, कुछ नया नया। अगर हम
1: बिल्कुल
0: पहले से बता देना तो सखियाँ हमारे सेट को छोड़कर चली जाएंगी, तो हम है ना सस्पेंस को खत्म कभी नहीं करेंगे, एक एक करके हम उनसे बातें करते चले जाएंगे।
1: बिल्कुल बहनों, और बहुत

0: अच्छी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि महिलाओं के स्वरोजगार और स्टार्टअप के बारे में। जी हाँ, जहाँ आज समय है कि कामकाजी महिलाएं और घर में भी जब परिवार को चलाना है तो दोनों बराबर पिलर अगर कमाते रहें तो आज की वर्तमान की जो स्थितियां हैं उससे हम निपट सकते हैं और बच्चों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो महिलाओं का स्वरोजगार क्या है और कैसे स्टार्टअप कर सकती है हमारी बहनें?
1: बिल्कुल, भारत में महिलाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहल की जा रही हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद कर रही हैं। जैसे कि मुख्य सरकारी योजनाओं पर अगर हम नजर डालें दीपिका, तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत महिला उद्यमियों को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें 5% राशि सब्सिडी के रूप में भी वापस दी भी जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़े तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो कि व्यक्तिगत महिलाओं को ₹50 लाख तक और समूहों को 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें 25% तक की सब्सिडी मिलती है।
0: बिल्कुल बहनों, जहां सरकार हमारे साथ है तो हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि स्वरोजगार जो है वो आप अपनी कौशल और अपनी रुचि के आधार पर स्वयं का कार्य और व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकती हैं। जैसे आप बुटीक का काम कर सकती हैं, आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं, आप सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं और उसी तरह वेलनेस का काम कर सकती हैं। योग और फिटनेस सेंटर अगर हम बात करें तो जगह जगह खुले हुए हैं और साथ ही साथ डिजिटल और ऑनलाइन काम भी, कंटेंट राइटिंग भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम, और खुर्शीदा आजकल तो यूट्यूब चैनल्स भी महिलाएं जो है वो बखूबी निभाती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने कौशल और रुचि के आधार पर है, और साथ ही साथ नर्सरी ये भी आजकल बहुत चल रहा है।
1: और हमारी सख्या अगर कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो सरकार उनके साथ है, तो सरकार से लीजिए उधार और कीजिए अपना काम शुरू। और साथ ही साथ जो भी आपको बिजनेस करना है, जैसे कि अचार पापड़ के बिजनेस है, जो अगर हमारी सख्या पढ़ी लिखी नहीं भी हैं लेकिन अचार पापड़ और मसाले बनाने में तो एक्सपर्ट है ही, तो वो छोटा मोटा अपना घर से ही शुरू कर सकती हैं। हस्तशिल्प और फैशन की बात करें तो खिलौने हैं, दरी बनाना है, टोकरियाँ बनाना है और बुटीक व्यवसाय। और आज ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? हम महिलाएं हैं और हम सब कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और बहनों, हम कहते हैं कि भाई इससे स्वरोजगार से क्या फ़ायदे हैं, तो खुर्शी का बहुत सी बातें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि सबसे पहले आप अगर बाहर कुछ काम करने या अपना रुचि के अनुसार करने जाएंगी तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने भीतर क्या रुचि है, क्या कौशल है उसे पहचानें। छोटे स्तर पर आप शुरुआत करें, बहुत बड़े लेवल पे हम शुरू ना करें। और तीसरी बात, सोशल मीडिया बहुत बड़ा आजकल अपने लिए प्लस पॉइंट है, तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ गुणवत्ता और विश्वास, आप अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं या किसी इस तरह का आपका फूड क्लाउड का जो है वो बिजनेस है, आप खाना शुरू कर रही हैं, तो आप ज़रूर गुणवत्ता उसमें कायम रखें, विश्वास ग्राहकों का जीतें और निरंतर सीखते रहें। ये बात नहीं कि मुझे ऐसा आता है तो यही चलेगा,
1: सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और जहाँ ऋण लेने की बात कही है मैंने, तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है कि अधिकांश योजनाओं के लिए, जैसे कि आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, IFSC कोड के साथ और फोटो की आवश्यकता होती है। ये डॉक्यूमेंट्स देकर आप आराम से लोन उठा सकते हैं और अपना नया कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, महिलाएं केवल सपने नहीं देखती,
1: सपनों को पूरा भी करती हैं,
0: सपनों को साकार भी करती हैं। और जब महिला आत्मनिर्भर हो तो वो केवल अपना जीवन नहीं बदलती, वह पूरे समाज और परिवार की दिशा बदलती है।
1: अब मेरी तरफ से अपनी सखियों के लिए पेशे खिदमत, कभी रुक ना सकेगा तुमसे सिलसिला मेरी मोहब्बत का, मेरा इश्क तेरी हाँ या ना का मोहताज नहीं।

0: मीठा मीठा शहद किसे अच्छा नहीं लगता है दीपिका, अच्छा लगता है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज़ है ये।
1: बिल्कुल।
0: और अगर इतनी फायदेमंद चीज़ है शहद, और अगर शहद को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खियों को भी बचाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस है, इसी सिलसिले में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बहनों, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि मधुमक्खियाँ और अन्य पराग कण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना।
0: और अगर हम मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालें तो उद्देश्य यही है कि मधुमक्खियों की रक्षा करना है, क्योंकि वे दुनिया के 75% से अधिक फसलों के, जैसा कि तुमने बता ही दिया है, और महत्व की अगर मैं बात करूँ तो मधुमक्खियाँ जैव विविधता को बनाए रखने और कृषि उत्पादकता में अहम भूमिका भी निभाती है।
1: बिल्कुल, मधुमक्खियाँ जो हैं वो पराग कणों में सबसे बड़ी सहायक हैं, यानी फूलों के पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे फलों, सब्जियों और अनाजों की पैदावार बढ़ती है।

0: सुरक्षा की अगर बात करें तो दुनिया के लगभग एक तिहाई खाद्य फसलें परागकण पर निर्भर हैं।
1: और खतरे की अगर हम बात करें तो मानव जनित प्रभावों के कारण मधुमक्खियां खतरे में हैं और उनके विलुप्त होने की दर सामान्य से 100 से 1000 गुना अधिक है। दीपिका, यह बहुत खतरे वाली बात है।
0: और सबसे बड़ी बात, कीटनाशकों का खुर्शीदा जो प्रयोग किया जाता है उससे भी मधुमक्खियों के लिए खतरा है। और जो जलवायु आजकल जो परिवर्तित हो रही है वो भी खतरे का विषय है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं वो केवल शहद ही नहीं देती

0: मक्खियों के लिए खतरा है, और जो जलवायु आजकल जो परिवर्तित हो रही है वो भी खतरे का विषय है, क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं वो केवल शहद ही नहीं देती बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन का बहुत बड़ा भूमिका बहुत बड़ी निभाती हैं।
1: इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2017 से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था कि हमें इसे
0: बिल्कुल
1: मनाना है और याद रखना है, और हमें कैसे करना है, क्योंकि शहद खत्म हो जाएगा अगर मधुमक्खियाँ खत्म हो गई दीपिका।
0: बिल्कुल, मधुमक्खी और मिठास की बातें तो हम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी।
1: बिल्कुल, और चले आगे। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी तुम्हारी मेरी चाहत की सजा बन गई, कैसे भुला दूँ मैं तुम्हें एक पल के लिए, तुम्हारी यादें मेरे जीने की वजह बन गई।

0: बिल्कुल खुर्शीदा, बहुत अच्छा सा गीत भी सुना और ये पंक्तियाँ भी बहनों ज़रूर सुने कि डूबे दिशी पल के ओर छोर, महिमा अपार सुखमय अछूर, जग जीवन का उल्लास यह सिहर सिहर, यह लहर लहर, यह फूल फूल करता विलास।
1: फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। ये खूबसूरत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की है,
0: क्योंकि
1: आज उनकी जयंती है, तो बात करें उन्हीं के ऊपर आ जाओ।
0: बिल्कुल, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, वो लेखक थे और छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं सुमित्रा नंदन पंत। और उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, जैसा कि अभी आपने सुना, साथ ही मानवता और सौंदर्य और संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय था।
1: बिल्कुल, उनका जन्म 20 मई 1900 को कोसानी में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और जैसा कि तुमने कहा कि वो प्रकृति से प्रेम करते थे, इसी के कारण उन्हें सुकुमार नाम भी कहा जाता था।
0: बिल्कुल, और बहनों पंत जी का बचपन जैसे हिमालय की सुंदर वादियों में बीता और उनका प्रभाव उनकी कविताओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। बाद में वे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए, जिसमें उनकी कविताओं में मानवतावाद और आध्यात्मिकता का समावेश हुआ। और प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं दीपिका, तो उनकी बहुत फेमस रचनाएं हुई हैं, वीणा पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, चिदंबरा, उनकी कालजयी कृतियाँ हैं। और उनके पुरस्कारों की भी हम बात करें, क्योंकि इतना कुछ हुआ है तो पुरस्कार उनके बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इस दिन साहित्यिक संस्थानों में कवि सम्मेलनों और साहित्यिक योगदान को याद किया जाता है, किया जाता है ना दीपिका?
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो हिंदी साहित्य में जो छायावादी युग था, जहाँ कोमलता की बातें होती थी, जहाँ प्रकृति प्रेम की बातें होती थी, तो उनकी कविताओं में एक जागरूकता तो है ही, साथ ही प्रकृति प्रेम बहनों जो आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है वर्तमान समय में, जहाँ पर हम प्रदूषण से या जंगलों के अभाव में जहाँ हम जूझ रहे हैं, ऐसे समय में निराला या पंत जी को जो है वो विशेष तौर पर याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवि थे वे।
0: बिल्कुल,
1: अब चलें फिर से वहीं जहां हमें चलना होता है।
0: बिल्कुल,
1: मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चले तो पड़े, मगर कोई रास्ते में बदल गया, कोई रास्ता ही बदल गया।
2: अच्छा तो हम चलते हैं,

0: अच्छा तो हम भी अब चलते हैं सखियों, लेकिन देखिए ना, आपके साथ हमारा मोह कभी ख़त्म ही नहीं होता है। दिल तो कहता है कि चले, लेकिन चलते चलते भी कुछ बातें तो थोड़ी करी ले तो मज़ा आएगा। ऑर्गेनिक उत्पाद का बढ़ता प्रचलन दीपिका, ये बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी सी बातें इस पर भी हम कर ही लेते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, आजकल हर चीज़ खाने

0: से लेकर सब्जियों से लेकर फल से लेकर जिस तरह का मिलावटी या हम कह सकते हैं कि केमिकल युक्त जो चीज़ें आ रही हैं उस दौर के चलते हम ऑर्गेनिक उत्पाद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। लोग जो हैं वो रासायनिक भोजन से होने वाली समस्याओं से बचना चाहते हैं और शुद्ध और पौष्टिक खाना चाहते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण जैसे जैविक खेती, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जल और वायु प्रदूषण जो है वो कम करने के लिए भी हम पर्यावरण की ओर मुड़ रहे हैं।
1: तो सखियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखती रहिए, क्योंकि आप महिला हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही रहती है। तो आपको चाहिए कि आप कैसे मेंटेन करती हैं, और
0: बिल्कुल
1: अब हमें भी चाहिए कि हम समय को कैसे मेंटेन करके चलते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो क्योंकि दीपिका विधि का विधान तो यही कहता है कि हमें समय के साथ चलना है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ कहना है तो जरा कह ही दो,
0: बिल्कुल,
1: दिल
0: मैं
1: की बात
0: कहना
1: आ
0: चाह
1: गई
0: रही
1: जुबा
0: हूँ
1: पर।
0: कि ऑर्गेनिक उत्पाद केवल एक फैशन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की ओर बढ़ता हुआ एक सकारात्मक कदम है। तो हम पूरा इस मंच से हम एक विश्वास रखते हैं कि आप ऑर्गेनिकता की ओर बढ़ेंगे और आप सुखद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं विदा।
1: लेकिन ऐसे
0: जी
1: महक दोस्ती की प्यार से कम नहीं होती, इश्क से जिंदगी शुरू या खत्म नहीं होती। अगर साथ हो जिंदगी में अच्छे दोस्तों का तो यह जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो चले अब इसी के साथ,
0: बिल्कुल,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

महिलाएं भी सुन रही थी उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त हुआ है 1:45 हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ऋचा ख्यानी। ना हो बात तो कोई बात नहीं, ना हो बात तो कोई बात नहीं, नजरें तकती रहें दीदार हो जाए। ना हो बात तो कोई बात नहीं, नजरें तकती रहती हैं कि दीदार हो जाए। ना हो इश्क तो कोई बात नहीं, पर चाहत है कि दोस्त का दीदार हो जाए।

श्रोताओं, सुन रहे थे आप ये प्यारा सा नगमा फिल्म उदयपुर फाइल से। इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया पलक मुच्छल और अमित जानी ने, और इस गीत पे संगीत दिया था राज बाशो ने, अमित जानी की रचना। कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी उदयपुर से फिल्म संगीत, और अगला गीत फिल्म धुरंधर से।

0: संगीत शाश्वत सचदेव का, अरिजीत सिंह की और अरमान सिंह खान की जुगलबंदी। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने। कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी उदयपुर से फिल्म संगीत। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

AIR@90. सैयारा इस फिल्म का ये गीत था आपकी रेडियो सेट पर, विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाजें। गीतकार थे राज पारिक और संगीत से सजाया था विशाल मिश्रा में। कार्यक्रम में अगला नगमा हम लेकर आए हैं फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म से हम आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं 2025 में आई फिल्मों के गीत, जो कुछ तो बहुत हिट रहे पर कुछ सुनने में बहुत बेहतरीन हैं, हमारे दिल को कहीं ना कहीं सुकून देते हैं। इस गीत को लिखा था तनिष्क बागची ने और संगीत से भी सजाया तनिष्क बागची ने, सोनू निगम और आशीष कौर की आवाज़ें। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं ये गीत फिल्म सनी कुमारी की, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से।

इसी गीत के साथ संगीत का ये सफ़र यहीं तक। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त ऋचा ख्यानी को, फिर मिलने के वादे के साथ। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए विकास चर्चा। विकास चर्चा का आज का विषय है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन के माध्यम से खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। एपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। गाय के गोबर, जीवाश्म ईंधन, कोयला, जलाऊ लकड़ी और अन्य अशुद्ध ईंधन जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को कम करना है।

बात की जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्रता की, तो इन श्रेणियों में आने वाले जो भी वयस्क महिलाएं हैं वह आने की इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए बिल्कुल पात्र हैं, जिसमें अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वनवासी, द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं एक ही परिवार में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं हो तो वह इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं।

0: इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में है कि इस योजना में एलपीजी कनेक्शन ना होने की स्थिति में एपीएल परिवार की वयस्क महिला के नाम पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत कनेक्शन शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के परिणाम स्वरूप लगभग 1 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होना और भारतीय उद्योग के लिए अगले कुछ वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार अवसर प्राप्त होने की संभावना है। इस योजना के माध्यम से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलता है और साथ ही सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर, गैस नली इत्यादि का निर्माण घरेलू उद्योगों के द्वारा किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए देश में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना भी इस योजना के अंतर्गत है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ स्वच्छ ईंधन के उपयोग के माध्यम से उन्हें बीमारियों को दूर करने और श्वसन रोगों से दूर रहने के लिए मदद की है। आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ, अब सुनते हैं समाचार दोपहर के आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री

0: के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन, राजनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर

0: दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट

0: जारी किया है।
1: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

0: सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रमा भाई, राम राम।
1: राम राम गायत्री भाई सा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाई बहना ने अपाणो राम राम, राम, राम सा। कार्यक्रम रो टेम वियो किसान भाई रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर हुआ सा। और किसान भाई भी नित नवादन नवी नवी जानकारियां हुणे, खेती बाड़ी में नवाचार करे, नवी नवी तकनीका रे बारे में जाने। तो रामा भाई, आज आप विचार वाली बात में ने किसान भाई अरे किसान की बात में ने कई लेन आया हो सा?
1: आज देखो किसान भाई ने बताऊँ कि जैविक कृषि में प्रमाणीकरण भी कई है और प्रक्रिया कई है, वनडे बारे में किसान भाई ने जानकारी देंगे सर।
0: बिल्कुल सा, जैविक कृषि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जो है, सब पहला यह कई चीज वे अंडी जानकारी करावा कि यह जो प्रक्रिया है यह सुनिश्चित करे है कि आपने जो किसान भाई जो फसल बोई रखी है वही फसल में पूरी तरीकों प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त तरीकों उगाई लगी है। और अणी में इन्हें भारत सरकार जो है अपने जो भी किसान भाई है अणा ने दो प्रणालिया के तहत सर्टिफिकेट भी देवे है। ये कसा कसा सर्टिफिकेट है वनारी जानकारी करावा। यो एक सर्टिफिकेट तो है NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यो व्यावसायिक और निर्यात रे वास्ते यो सर्टिफिकेट वेवे है। दूसरो जो है यो PGS इंडिया, यो जो है यो स्थानीय या पचे घरेलू बाजार रे वास्ते वेवे। यो जो है सर्टिफिकेट यो छोटा किसान भाई रे वास्ते काफी सस्तो और आसान वेवे है सा।
1: बिल्कुल सा, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मुख्य चरण जो है वणी में पहलो चरण है आवेदन करनो। वणी में सबों पहले पहला किसान समूह ने प्रमाणित निकाय जो है वनटे अपने आवेदन जमा कराना है। दूसरा चरण में दस्तावेजकरण और निरीक्षण है, जड़ी में किसान भाई ने अपने खेत में जैविक तरीका अपनावना पड़े और पूरा रिकॉर्ड भी उन्होंने रखना पड़े सा।
0: बिल्कुल सा, जो भी दस्तावेज है वना दस्तावेजारी जो जांच है वह अपने संस्था करेगा और जो भी सही पाया जाएगा पे आपरे और संस्था रे वच में एक समझौतो भी वेगा और आपरे प्रमाणीकरण री जो फीस है वह भी जमा करवानी वेगा सा।
1: बिल्कुल सा, अणि में फसल में पूरी तरह जैविक मानवार लिए 3 साल की परिवर्तन अवधि भी वे है। अंडे अलावा देखो प्रमाण पत्र जारी व्यवहार लिए सही रिपोर्ट पाए जाने बाद संस्थान जो है वो किसान भाई ने जैविक प्रमाण पत्र और प्रमाणीकरण लोगो जारी करे सा।
0: बिल्कुल सा, जो भी खेत रो निरीक्षण जो कि संस्था रा अधिक

0: अधिकारी जो है वे खेत पे आएगा और खेत रो निरीक्षण करेगा। वे मिट्टी, पानी, बीज, खाद और जो भी रखा लगा जो रिकॉर्ड है वनारी जांच करेगा। और अगर मान लो कोई भी वनाने संदेह दिखेगा तो वे मिट्टी या पचे फसल रो सैंपल जो है वो लैब टेस्ट रे वास्ते भेज सकेगा सा।
1: बिल्कुल सर। अंडे अलावा देखो, सर्टिफिकेट जारी और पहला निरीक्षण अधिकारी जो है वह रिपोर्ट के आधार पर आपने सभी जो जैविक मान का पूरी अगर करो आप, तो आपने जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र आपने जारी किया जाएगा और अनुपात फसल पे इंडिया ऑर्गेनिक या पचे PGS इंडिया ऑर्गेनिक लोगो भी आपका लगाई सका सर।
0: बिल्कुल सा। तो प्रमाणीकरण करवारे वास्ते सब पहला किसान भाइया ने आवेदन करवानो और पंजीकरण करवानो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यो जो आवेदन है, पंजीकरण है, यो आपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहीं भी प्रमाणीकरण संस्थाओं करवाई सके किसान भाई। और आवेदन ने पूरा आवेदन फार्म भर ना आपने जो भूमि रो ब्योरो है, नक्शो है और खेती रो जो भी इतिहास है वड़ा ने जमा करवानो वेगा सा।
1: बिल्कुल सर। तो देखो, जानकारी तो और भी दांगा गायत्री भाई साहब, और अंडे पहला होना एक बड़े सो राजस्थानी लोक संगीत और साथ साथ में होना संदेशा भी।
0: हाँ सर।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड।

0: नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी आकाशवाणी।
1: तो रामा भाई किसान भैया ने मनभावन राजस्थानी गीत हुनायो सा लारे लारे संदेश भी हुनाया और अबे किसान भैया ने जटे किसान री बात में बताई रहा कि जैविक कृषि प्रमाणीकरण री प्रक्रिया कई वेवे है या जो जैविक प्रणाली है या उत्पादक ने अपने खेत और खेतीवाड़ी री अलग अलग प्रक्रिया रो जो वर्णन है यो ऐसा व्यक्ति ने करवारो अवसर प्रदान करे है जणी देखियो भी नहीं है और यो समझनो है कि कई आवश्यक है और कई आवश्यक नहीं है यो प्रक्रिया ने बहुत ही ज़्यादा आसान भी बनावे है सा।
2: बिल्कुल सर, कहीं भी खेत में जैविक प्रमाणन प्राप्त करवाने लिए किसान भाई ने अपनी पहली जैविक फसल की कटाई रे 36 महीना पहले तक वहीं खेत में उपयोग री दी गई सभी सामग्रियाँ और दस्तावेजकरण कराना पड़े हैं। प्रमाणन एजेंसी पाचो खेत में इतिहास की समीक्षा करे और निर्धारित करे कि ये खेत प्रमाण करने योग्य है या नहीं है।
1: बिल्कुल सा, संचालक जो है वे समझौता पे हस्ताक्षर करवा वाला व्यक्ति जो है नियमारा पालन करवारे वास्ते सहमत वे है और पुष्टि करे कि प्रमाणक ने दी की जो जानकारी है वह सही है या पचे नहीं है अणि समझौता पे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कियो जनो छावे है जो संचालन संबंधी निर्णय लेवारे वास्ते उत्तरदायी वे है।
2: बिल्कुल सा, और जो नया आवेदक है वनारे लिए अनुमानित जैविक उत्पादक री बिक्री रो अलंकर करवा लिए भी केवे हैं उन्होंने और प्रमाणन के लिए नवीनीकरण और किसान ने जैविक उत्पादन री उपज और बिक्री री रिपोर्ट भी देनी पड़े। आमतौर पर बिक्री री रिपोर्ट वणी कैलेंडर वर्ष में दी जावे जो जनी वर्ष में उन्होंने भुगतान प्राप्त हुए सा।
1: प्रमाणन एजेंट जो है वे आवेदन री समीक्षा भी करे है, प्रमाणक उत्पादक द्वारा जो प्रस्तुत ओएसपी है या प्रमाणन रे वास्ते जो भी दस्तावेज है वनारी समीक्षा करे है, प्रमाणक रे आवेदन रे समय पे स्पष्ट रूप सूचित करे है कि आवेदन जो है वो पूर्ण रूप सही है या नहीं है या ओएसपी नियमारा अनुपालन करे है या नहीं है। अगर आवेदन पूर्ण है और परिचालन जो है वो एनओपी नियमारा अनुपालन करे तो एक निरीक्षक ने परिचालन रे वास्ते नियुक्त कियो जावे और वे निरीक्षण रो समय निर्धारित करे है सा।
2: बिल्कुल सा, अणि में देखो जैविक निरीक्षण री भूमिका भी वे है अणि में कि जैविक निरीक्षण रो निरीक्षण योजना में चर्चा करवा लिए प्रारंभिक बैठक आयोजित करनी चाहे और वहीं बैठक में निरीक्षण री भूमिका परिभाषित भी की जावे, अणि में सूचनाओं ने गोपनीयता सुनिश्चित की जावे और नियोजित जो निरीक्षण गतिविधियाँ है वनारी रूपरेखा प्रस्तुत भी की जावे सा।
1: बिल्कुल सा,
2: और निरीक्षण के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करवाने के लिए आवेदक ने जो प्रश्न और उत्तर देवे वनडो अवसर भी मिले सा।
1: और कसा कसा दस्तावेज जो है वे जैविक कृषि प्रमाणीकरण प्रक्रिया में छावे वो भी किसान भैया ने जानकारी करावा। अंडे वास्ते किसान भैया ने आवेदन करता टेम पहचान पत्र यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पचे वोटर आईडी छावे है। लारे लारे जमीन रा दस्तावेज यानि भूमि रो नक्शो है, खसरा खतौनी या पचे लीज एग्रीमेंट रो जो दस्तावेज है वो किसान भैया ने अंडे वास्ते जरूरी छावे है। लारे लारे खेत री डायरी यानि अणमेने आपने हर दन री गतिविधि लिखनी वेगा जिसे कदी कसी खाद डाली है, गोबरी खाद डाली है, केचुअरी खाद डाली है, कसो जैविक कीटनाशक इस्तेमाल की दो है, कदी बुआई की दी है, तो यो सब जो है आवश्यक दस्तावेज अणि प्रक्रिया रे वास्ते किसान भाइया ने छावे है सा। और लारे लारे जैविक खेती रो जो सर्टिफिकेट वेवे यो एक वर्ष रे वास्ते वैध वेवे है। अंडे हर साल किसान भाई नवीनीकरण करवाई सके है लेकिन दोबारा निरीक्षण भी वेवे है, तो किसान भाई अगर अणि तरीका जो जैविक खेती किसान भाई करे है मंडे वास्ते प्रमाणीकरण प्रक्रिया करवाई सके सा।
2: तो देखो गायत्री भाई सा, या तो बढ़िया सी बात जानकारी बताई आप और अब एक और बढ़िया सा राजस्थानी गीत होना सर।
1: हाँ।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: तो रामा भाई, किसान भैया ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा।
2: हाँ सा।
1: और अबे किसान भैया ने जानकारी करामा कि किसान भैया ने खेती बाड़ी भी करे, उत्पादक भी किसान भैया ने खेती बाड़ी में हाँचो व्यवसा। और अगर किसान भाई मंडी भाव वो अपडेट रहेगा तो यो किसान भैया रे वास्ते बहुत ही फायदा वाली बात रहेगा, क्योंकि मंडी रा ताजा और सटीक भाव जो भी है वनाऊ अपडेट रहवा पे किसान भैया ने नरई फायदो भी मिलेगा और वना ने कई कई भाव चल रहा वना की जानकारी भी मिलेगा सा।
2: बिल्कुल सा, मंडी रे ताजा और सटीक भाव रे लिए अपडेट रेवर वास्ते कि अपने भारत सरकार एक जो अलग अलग राज्य है वना रे लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करे रखियो सा। अणी में सरकारी

0: आधिकारिक जो पोर्टल है मणि में, भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा मुख्य संचालित जो है वह प्रमाणित स्रोत भी है। अंडे अलावा वेबसाइट भी है, जैसे आप आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाइने अपना जिला या स्थानीय मंडी का भाव आप रोज जांच सका सा।
1: बिल्कुल सा अंडे ला रहे, कुछ मोबाइल ऐप्स भी है तो किसान भाई, जिस तरह की ई नाम है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यो आधिकारिक ऐप है, अंडे जरिए किसान भाई देश भर री जो भी मंडिया है वनारो जो लाइव भाव है वे ट्रैक कर सके है। लारे लारे मंडी भाव ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे नरे हारा निजी और विश्वसनीय ऐप भी मौजूद वे है जो विशेष रूप हिंदी में दैनिक भाव और तेजी मंदी री रिपोर्ट भी प्रदान करे है सर।
0: बिल्कुल सर। अंडे अलावा देखो जो SMS है और व्हाट्सएप अलर्ट है, वना पे भी देखो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ हूँ वना ने बार बार मैसेज भी आवे तो किसान भाई वटे भी आप जाइना आप ये चेक कर सका कि आज बाजार भाव कई है सा।
1: तो मंडियारा भाव में ने हर दिन उतार चढ़ाव वेतु रेवे अणि वास्ते सटीक व्यापार और बिक्रियों ठीक पहला संबंधित मंडीरा आधिकारिक पोर्टल पे जैन किसान भाई अंडी पुष्टि जरूर कर लेवे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सर।
1: या तो भी जानकारी और अबे पाछा किसान भाई रो मनोरंजन करावा और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: आप सुन रहे थे कृषि आधारित दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में

0: रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। वार्ता के दौरान भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित हैं। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने हेतु सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। राजस्थान के अधिकांश जिले इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे पुनः भेंट होगी शाम 5 बजे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बजा जाते हैं। युवा श्रोता सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम युवानी में। आज मैं हूं आपके साथ वंदना और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रेरणा। आज यानी 20 मई के सफ़र में हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ खास है। आज हम बात करेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्री के नए स्टार्टअप्स और यूथ एम्पावरमेंट में फ्रीलांसिंग के बढ़ते दौर की। साथ ही आपको सैर कराएंगे इतिहास के उस बेजोड़ अजूबे की जिसे हम एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। आज वर्ल्ड बी डे भी है और उसी के साथ साथ हम सुमित्रा नंदन पंत, एनटी रामाराव जूनियर और जेम्स स्टीवर्ट जैसी महान हस्तियों को भी याद करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह शेयर मार्केट का हाल, स्पोर्ट्स अपडेट और आज का इतिहास भी शामिल रहेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र।

0: वंदना, कभी सोचा है अगर एक दिन अचानक धरती से ये छोटी सी भिनभिनाहट गायब हो जाए तो क्या होगा?
1: शायद फूलों की रंगत फीकी पड़ जाएगी, शायद खेतों की मुस्कान सूख जाएगी और शायद प्रकृति थोड़ी खामोश हो जाएगी।
0: क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं, ये धरती का सबसे मेहनती साइलेंट वर्कर है। इतनी छोटी फिर भी पूरी दुनिया के भोजन और पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक।
1: हर साल आज ही के दिन यानी 20 मई को दुनिया मनाती है वर्ल्ड बी डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसान अकेले प्रकृति को जीवित नहीं रख सकता।
0: दोस्तों, इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली मान्यता दी और 20 मई इसलिए चुना गया क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था एंटोन जेंशा का, जिन्हें मॉडर्न बी कीपिंग का पायोनियर माना जाता है।
1: दोस्तों, हमारी प्लेट में जो रंग बिरंगे फल और सब्जियां आती है ना, उनमें से अधिकांश कहीं ना कहीं मधुमक्खियों की मेहनत का परिणाम है।
0: और अगर एक चौंका देने वाला फैक्ट अगर आपको बताया जाए तो वो ये है कि दुनिया की लगभग 75% फूड क्रॉप्स पॉलिनेशन पर निर्भर करती है और पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जिम्मा संभालती है हमारी मधुमक्खियां।
1: यानी सेब की मिठास, आम की खुशबू, स्ट्रॉबेरी का स्वाद, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन नन्हे पंखों की मेहनत छुपी है।
0: लेकिन अफसोस, आज क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स और पॉल्यूशन की वजह से बीज की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है।
1: और साइंटिस्ट इसे सिर्फ इंसेक्ट्स को कम होना नहीं मानते, वे मानते हैं कि ये नेचर का वार्निंग अलार्म है।
0: क्योंकि जब बीज खतरे में होती है तो समझ लीजिए इकोसिस्टम का बैलेंस भी खतरे में है।
1: अब चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको कहने पर मजबूर कर देंगे कि वाह, इतनी छोटी और इतनी अद्भुत।
0: दोस्तों, एक वर्कर बी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लगभग एक चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद बना पाती है।
1: बीज डांस करके एक दूसरे को रास्ता बताती है, इसे कहा जाता है वैगल डांस।
0: एक बी कॉलोनी में लगभग 50,000 से ज्यादा मधुमक्खियां रह सकती है।
1: और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर मधुमक्खियां धरती से गायब हो जाएं तो सिर्फ हनी नहीं, हमारी बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी तक प्रभावित हो सकती है।
0: तो दोस्तों, आज जब भी किसी फूल पर मंडराती हुई मधुमक्खी को देखें तो उसे सिर्फ एक इंसेक्ट मत समझिएगा,
1: क्योंकि वो अपने छोटे छोटे पंखों से धरती की हरियाली, खेतों की उम्मीद और आने वाले कल की जिंदगी को उड़ान दे रही है।
0: ये नन्ही सी उड़ानें ही धरती को महकाती है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं, जीवन की मिठास बचाती।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हर प्रोडक्ट के साथ साइलेंटली जुड़ी होती है, लेकिन आज स्टार्टअप ने इसे सुपर इनोवेटिव बना दिया है। नाम है इसका पैकेजिंग इंडस्ट्री।
1: बिल्कुल, पहले पैकेजिंग का मतलब सिर्फ डब्बा या प्लास्टिक रैप होता था, लेकिन अब स्मार्ट, इको फ्रेंडली और क्रिएटिव पैकेजिंग का जमाना आ गया है।
0: और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का पैकेजिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और कॉस्मेटिक ब्रांड्स के बढ़ते ट्रेंड ने पैकेजिंग स्टार्टअप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है।
1: आजकल कस्टमर्स भी एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए स्टार्टअप्स बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल पैकेजिंग पर काम कर रहे हैं।
0: हाँ, कुछ स्टार्टअप तो एग्रीकल्चर वेस्ट से भी पैकेजिंग बना रहे हैं, जैसे कि शुगर केन बैगेजेस और बैम्बूज और कॉर्न स्टार्च से।
1: मतलब खाना ऑर्डर करो और पैकेजिंग भी नेचर फ्रेंडली, ये हुई ना सस्टेनेबल थिंकिंग।
0: अब पैकेजिंग सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो भी बन चुकी है।
1: एग्जैक्टली, QR कोड्स, टेम्परेचर सेंसिटिव लेबल्स, एंटी काउंटरफीट सील्स सब यूज हो रहा है।
0: और स्टार्टअप्स AI और IoT का यूज करके स्मार्ट पैकेजिंग डेवलप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट फ्रेशनेस ट्रैक कर सकती है। स्पेशली मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री में इसका यूज बढ़ रहा है।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने पैकेजिंग इंडस्ट्री को लिटरली बूस्ट दे दिया है। हर दिन लाखों पार्सल्स डिलीवर होते हैं
0: और इसी वजह से कस्टमाइज बॉक्सेस, टेम्पर प्रूफ पैकेट्स और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा आसमान छूने लगी है।
1: और अब तो स्मॉल बिजनेसेस भी अपनी ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग चाहते हैं ताकि कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस मिले।
0: और सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आ रहे हैं।
1: कुछ स्टार्टअप्स रीयूजेबल डिलीवरी बॉक्सेस बना रहे हैं तो कुछ एडिबल पैकेजिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इमेजिन करो, पैकेजिंग को फेंकना नहीं है, खाना है।
0: और दोस्तों, इनोवेशन का लेवल तो देखिए कि पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक और एक्साइटिंग एंगल है ये, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। आज इंडियन पैकेजिंग स्टार्टअप्स इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, पहले इंडिया मेनली लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इनोवेटिव और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रही है।
0: स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट्स में इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है। वहां गवर्नमेंट्स सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो लेकर आ रही है।
1: बिल्कुल, और इसी अपॉर्चुनिटी को इंडियन स्टार्टअप्स स्मार्टली यूज कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल बॉक्सेस, रिसाइकल पेपर मेलर्स, कंपोस्टेबल फूड कंटेनर्स और प्लांट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं।
0: और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, इसीलिए इंडियन स्टार्टअप्स कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट में हाई क्वालिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है वो कर पा रही है।
1: सही कहा, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, पैकेजिंग डिजाइन सर्विसेज भी ग्लोबली डिमांड में है। आज ब्रांडिंग और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि कंपनीज अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर मिलियंस इन्वेस्ट कर रही है।
0: और ई कॉमर्स जायंट्स और लग्जरी ब्रांड्स भी कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस चाहते हैं ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट ओपन करते ही प्रीमियम फील आए।
1: इसीलिए स्टार्टअप्स अब लाइट वेट पैकेजिंग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल्स, साथ ही स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जिससे शॉपिंग कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्ट सेफ्टी भी मेंटेन रहे।
0: मतलब एक सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे भी टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी का बड़ा रोल होता है।
1: एग्जैक्टली प्रेरणा, और ये इंडस्ट्री यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन चुकी है जहां इनोवेशन डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, पैकेजिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ रैपिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी का पावरफुल कॉम्बिनेशन बन चुकी है।
0: और स्टार्टअप इस इंडस्ट्री को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। हो सकता है कि कल का नेक्स्ट यूनिकॉर्न किसी कार्डबोर्ड बॉक्स आइडिया से ही निकले।

0: दोस्तों, पैकेजिंग इंडस्ट्री की ये मॉडर्न और इनोवेटिव दुनिया हमें दिखाती है कि इंसान की क्रिएटिविटी किस लेवल तक जा सकती है।
1: और जब क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग की बात हो तो हमें अपनी हिस्ट्री के कुछ ऐसे मास्टरपीसेस भी याद आते हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था।
0: बिल्कुल, आज स्टार्टअप स्मार्ट पैकेजिंग बना रहे हैं, लेकिन सदियों पहले भारत के कलाकारों ने पत्थरों में ऐसी इंजीनियरिंग दिखाई थी जिसे देखकर लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं।
1: तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्टअप वर्ल्ड से निकलकर चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा की तरफ और बात करते हैं दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल रॉक कट स्ट्रक्चर्स में से एक, कैलाश टेम्पल की। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कैलाश टेम्पल, जिसे देखकर इंसान एक ही बात सोच सकता है, आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे होगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल माना जाता है, यानी पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है।
1: और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं बनाया गया, यानी नीचे से ऊपर इसे नहीं बनाया गया, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर इसका एक्सकेवेशन किया गया था, इसे कार्व किया गया था। मतलब क्राफ्ट्समैन ने पहले पहाड़ के ऊपर पोर्शन को कट किया और धीरे धीरे नीचे आते हुए पूरा स्ट्रक्चर निकाला।
0: दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट का रूलर कृष्ण प्रथम के रीजन में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसका नाम भगवान शिव के डिवाइन होम माउंट कैलाश पर रखा गया है।
1: और अब जरा इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है।
0: दोस्तों, इस टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वो लगभग 276 फीट लंबा और लगभग 150 फीट चौड़ा माना जाता है, और जो सेंट्रल श्रीन है उसकी हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी लगती है।
1: एंट्रेंस पर आपको एक ग्रैंड गेटवे दिखता है, उसके बाद कोर्टयार्ड और फिर मैसिव स्टोन एलिफेंट्स और पिलर्स नजर आते हैं जो ऐसा फील देते हैं जैसे पूरा टेम्पल उनके कंधों पर टिका हो।
0: दोस्तों, टेम्पल के अंदर नंदी मंडप भी बना

0: हुआ है, यानी भगवान शिव की सवारी नंदी को डेडिकेटेड स्ट्रक्चर, और ये भी एक ही रॉक मास का पार्ट है।
1: और सबसे मेस्मराइजिंग चीज ये है इसकी कार्विंग्स। वॉल्स पर रामायण और महाभारत के सीन्स ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं। रावण शेकिंग माउंट कैलाश वाली स्क्रिप्चर स्पेशली बहुत फेमस है।
0: और डिटेलिंग देखिए दोस्तों, टाइनी ऑर्नामेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, डांसिंग फिगर्स, देवी देवताओं की मूर्तियां और मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आज भी कोई इसे देखता है तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है।
1: और एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इस टेंपल को बनाने के लिए करीबन 2,00,000 टन पत्थर रिमूव किया गया होगा, और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि अगर कंटिन्यूसली काम भी किया हो तब भी इसे कंप्लीट करने में दशक लग गए होंगे।
0: और दोस्तों उस टाइम ना तो मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन्स थी, ना क्रेन्स, ना लेजर मेजरमेंट्स। दोस्तों वहां से थे तो सिर्फ हैमर्स, कीसल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल प्लानिंग।
1: मंदिर की सिमेट्री और अलाइनमेंट इतनी एक्यूरेट है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इसकी इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं। रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और साथ ही स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रिमार्केबल माना जाता है।
0: दोस्तों कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स का केव नंबर 16 है, और एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन केव्स एक साथ मिलते हैं, जो इंडिया की कल्चरल हार्मोनी को भी रिफ्लेक्ट करती है।
1: और इसी हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस की वजह से एलोरा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, और हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ आते हैं।
0: सच में कैलाश टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, ये ह्यूमन इमेजिनेशन, डेडिकेशन और इंजीनियरिंग की ब्रिलियंस एग्जाम्पल है।
1: बिल्कुल, और जब भी हम मॉडर्न इनोवेशन की बात करें, हमें याद रखना चाहिए कि सेंचुरीज पहले भी भारत में ऐसी क्रिएशंस हुई थी जो आज तक मिस्ट्री और इंस्पिरेशन बनी हुई है।

0: दोस्तों, कैलाश टेंपल हमें यह सिखाता है कि जब विजन, स्किल और डेडिकेशन एक साथ आ जाए तो पत्थरों में भी मास्टरपीसेस क्रिएट किए जा सकते हैं।
1: और आज के यूथ के पास भी कुछ ऐसी ही पावर है, बस टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मॉडर्न हो गए हैं। पहले लोग चिजल और हैमर से हिस्ट्री क्रिएट करते थे और आज लैपटॉप्स और इंटरनेट से नए करियर पाथ्स बिल्ड हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, आज का यंग जनरेशन ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब्स के अलावा अपनी स्किल्स के दम पर इंडिपेंडेंट करियर बना रहा है।
1: तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट के एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड की, फ्रीलांसिंग। तो प्रेरणा, आज के डिजिटल एरा में जॉब का मतलब

0: 9 टू 5 जॉब्स के अलावा अपनी स्किल्स के दम पर इंडिपेंडेंट करियर बना रहा है।
1: तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट के एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड की, फ्रीलांसिंग। तो प्रेरणा, आज के डिजिटल एरा में जॉब का मतलब सिर्फ ऑफिस जाना और फिक्स्ड डेस्क पर काम करना नहीं रहा। अब एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और स्किल के दम पर दुनिया के किसी भी कोने से काम किया जा सकता है, और इसी रिवॉल्यूशन का नाम है फ्रीलांसिंग।
0: बिल्कुल, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स के लिए काम करना, यानी आप किसी एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि ये अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं।
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ आईटी या कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग फ्रीलांस करियर बिल्ड कर सकते हैं।
0: अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी, म्यूजिक प्रोडक्शन या कंटेंट राइटर, तो फ्रीलांसिंग का की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही ह्यूज है।
1: सोशल मीडिया ग्रोथ की वजह से ब्रांड्स को हर दिन लोगोस, रील्स, एड वीडियोस, पोस्टर्स और डिजिटल कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए क्रिएटिव फ्रीलांसर्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है।
0: दोस्तों, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी फ्रीलांसिंग में काफी ग्रो कर रहे हैं।
1: हाँ, स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जीएसटी फाइलिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, स्टॉक मार्केट रिसर्च और बिजनेस एनालिटिक्स की डिमांड काफी हाई है।
0: बहुत से स्टार्टअप्स फुल टाइम स्टाफ हायर करने की बजाय फ्रीलांस अकाउंटेंट्स और मार्केटर्स के साथ काम करते हैं, जिससे कंपनीज की जो कॉस्ट है वो भी कम होता है और प्रोफेशनल्स को फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है।
1: इंजीनियरिंग और टेक फील्ड की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई टूल्स, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स ग्लोबल लेवल पर हाईली डिमांडिंग है।
0: और एआई रिवॉल्यूशन की बात तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन सेटअप और मशीन लर्निंग रिलेटेड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं।
1: आज इंडियन फ्रीलांसर्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स, एप्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं और फॉरेन करेंसी में अर्निंग भी कर रहे हैं।
0: मेडिकल फील्ड भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं रहा है।
1: बिल्कुल, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑनलाइन कंसल्टेशन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हेल्थ केयर कंटेंट राइटिंग, न्यूट्रिशनल कोचिंग और टेलीमेडिसिन सर्विसेज के थ्रू फ्रीलांसिंग कर रहे हैं।
0: फिटनेस ट्रेनर्स, योगा एक्सपर्ट्स और मेंटल वेलनेस कोचेस भी ऑनलाइन सेशंस के थ्रू ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं।
1: फ्रीलांसिंग सिर्फ अर्निंग का मीडियम नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक पावरफुल मोड बन चुका है।
0: कैसे? क्योंकि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर आगे चलकर अपनी स्मॉल टीम क्रिएट करता है, राइटर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स, और धीरे धीरे एक मिनी स्टार्टअप बिल्ड हो जाता है।
1: और गांवों और स्मॉल टाउन्स के लिए जो यूथ है, उनके लिए ये फ्रीलांसिंग जो है वो एक गेम चेंजर सा बन चुका है, क्योंकि अब फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए तो बस एक स्किल। अब अपॉर्चुनिटीज के लिए मेट्रो सिटीज शिफ्ट होना जरूरी नहीं है।
0: दोस्तों, इंटरनेट ने टैलेंट को ग्लोबल स्टेज दिया है। आज राजस्थान, बिहार या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यंग क्रिएटर्स भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं।
1: एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग मॉडल पर काम करेगा। कंपनीज भी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग को प्रेफर कर रही है।
0: मतलब फ्यूचर में डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और पर्सनल पोर्टफोलियो का एक जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है।
1: तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग सिर्फ पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि यूथ एम्पावरमेंट, इनोवेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है।
0: अगर स्किल्स है, डेडिकेशन है और लर्निंग का पैशन है, तो आज का डिजिटल वर्ल्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है।
2: अभी साले मोटे कितना सोएगा? एक अकड़ी
3: मिलते हैं क्या?
2: 4 o'clock, done.

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके कर्म और उनकी प्रेरणा समय से कहीं आगे निकल जाती है।
4: और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक प्रेरणा से जुड़ने के जैसा होता है।
3: तो आइए आज जन्म जयंती और पुण्यतिथि विशेष में याद करते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने साहित्य, सिनेमा, खेल और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
4: आज सबसे पहले बात उस कवि की जिसने प्रकृति को शब्दों में उतार कर हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। आज जयंती है महान हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की।
3: दोस्तों, 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में जन्मे पंत जी हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं।
4: कहते हैं, हिमालय की वादियां, बादलों की चाल और प्रकृति की शांति उनकी कविताओं में सांस लेती थी।
3: बचपन में ही माताजी का साया सर से उड़ गया, लेकिन संवेदनाओं ने उन्हें एक ऐसा कवि बनाया जिसकी रचनाएं आज भी दिल को छू जाती है।
4: उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, लोकनायतन, चिंदरा शामिल है। चिंदरबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
3: लेकिन दोस्तों, पंत जी सिर्फ प्रकृति के कवि नहीं थे, उन्होंने मानवता, समाज और संवेदनशीलता को भी अपनी लेखनी का केंद्र बनाया।
4: उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी मन को छू जाती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।
3: सच में दर्द को भी संगीत बना दें, यही तो सच्चे कवि की पहचान होती है।
4: दोस्तों, शब्दों की दुनिया से अब चलते हैं उस चमकती दुनिया की ओर जहां अभिनय सिर्फ कला नहीं भावनाओं का आईना बन जाता है।
3: दोस्तों, आज जन्मदिन

0: बस है हॉलीवुड के उस लेजेंडरी एक्टर की जिसकी सादगी और अभिनय ने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। नाम है उनका जेम्स स्टुअर्ट।
1: 20 मई 1908 को अमेरिका में जन्मे जेम्स स्टुअर्ट हॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में गिने जाते हैं।
0: उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे की दुनिया में ले आई।
1: उनकी फिल्मों में रियलिज्म इतना गहरा होता था कि दर्शकों को लगता था जैसे स्क्रीन पर कोई अभिनेता नहीं बल्कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी जी रहा हो।
0: उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से हैं इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रेयर विंडो, वर्टिगो और मिस्टर स्मिथ गोज टू वॉशिंगटन।
1: उन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनकी विनम्रता।
0: दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में सेवा दी और अपने स्टार स्टेटस के बावजूद एक सामान्य सैनिक की तरह देश के लिए काम किया।
1: यही तो असली महानता है जब प्रसिद्धि इंसानियत से बड़ी न हो। कुछ लोग किरदार निभाते हैं और कुछ लोग अपने किरदार से जिंदगी सिखा जाते हैं।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी एनर्जी, डेडिकेशन और स्क्रीन प्रेजेंस ने दुनिया को चौंका दिया।
1: आज जन्मदिन है साउथ इंडियन सिनेमा एक्टर के पावरफुल पैक्ड सुपरस्टार नंदमुरी तारक रामराव जूनियर यानी जूनियर NTR का।
0: दोस्तों, 20 मई 1983 को जन्मे जूनियर NTR लेजेंडरी एक्टर और नेता NT रामाराव के परिवार से आते हैं।
1: लेकिन उन्होंने सिर्फ परिवार के नाम पर पहचान नहीं बनाई बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से अलग मुकाम हासिल किया।
0: स्टूडेंट नंबर 1, सिंहाद्री, टेम्पर, जनता गैरेज और RRR जैसी फिल्मों ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई है।
1: उनकी एक्टिंग, डांस और इंटेंस एक्सप्रेशंस ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया।
0: लेकिन दोस्तों, इतनी सफलता होने के बावजूद भी उनका ग्राउंडेड नेचर हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है।
1: उनकी जर्नी हर युवा को ये सिखाती है कि टैलेंट तभी चमकता है जब उसके पीछे डिसिप्लिन और डेडिकेशन हो। सपने वही सच होते हैं जिन्हें मेहनत नींद से ज्यादा प्यारी हो।

0: दोस्तों, सिनेमा की चमक से अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां संघर्ष और आत्मविश्वास नई मिसालें बनाते हैं।
1: आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेट के प्रेरणादायक हस्ती अंजुम चोपड़ा का।
0: दोस्तों, 20 मई 1977 को दिल्ली में जन्मी अंजुम चोपड़ा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को नई पहचान दिलाई।
1: जब महिला क्रिकेट को ज्यादा पहचान नहीं मिलती थी, तब उन्होंने अपने खेल से लोगों की सोच बदल दी।
0: दोस्तों, वे भारतीय टीम की कप्तान भी रही और 2007 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2014 में वे पद्मश्री से सम्मानित हुई। और दोस्तों, उनके नाम एक बहुत ही बड़ा, यूं कहें एक लक्ष्य उन्होंने पूरा किया था, और वो भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में 1000 रन पूरे किए हैं।
1: मैदान के बाद भी उन्होंने कमेंट्री और एनालिसिस के जरिए खेल से अपना रिश्ता हमेशा बनाए रखा।
0: दोस्तों, उनकी कहानी हर लड़की को ये विश्वास देती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, जो मुश्किलों से लड़ जाए वही इतिहास बन जाए।
1: और अब बात है उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया किंग ऑफ रग्बी सेवन्स के नाम से जानती है।
0: आज जन्मदिन है रग्बी लीजेंड वैसिल सर्वी का।
1: 20 मई 1968 को फिजी में जन्मे सर्वी बहुत साधारण परिस्थितियों से निकलकर दुनिया के सबसे महान रग्बी खिलाड़ियों में से शामिल हुए।
0: दोस्तों, उन्होंने फिजी को कई बड़ी इंटरनेशनल्स जीत दिलाई और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम में भी अपनी जगह बनाई।
1: उनकी स्पीड, लीडरशिप और क्रिएटिविटी ने उन्हें एक आइकन बना दिया।
0: भारत के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि वे भारतीय रग्बी टीम के कोच भी रह चुके हैं।
1: उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपने नहीं। हौसलों की उड़ान कभी छोटी नहीं होती, जो गिर कर उठ जाए उसकी हार नहीं होती।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आज दोस्तों अब समय है इतिहास के उस महान योद्धा को याद करने का जिसने अपने साहस और नेतृत्व से मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी।
1: आज पुण्यतिथि है महान मराठा योद्धा मल्हार राव होलकर की।
0: दोस्तों वर्ष 1693 में एक साधारण परिवार में जन्मे मल्हार राव होलकर अपनी वीरता और नेतृत्व के दम पर मराठा साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में शामिल हुए और होलकर साम्राज्य की स्थापना की।
1: उन्होंने मालवा क्षेत्र में मराठा शक्ति को मजबूत किया और इंदौर राज्य की नींव रखी।
0: लेकिन वे सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि महिलाओं के सम्मान और समाज सुधार की सोच रखने वाले दूरदर्शी शासक भी थे।
1: अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासक को आगे बढ़ाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0: दोस्तों उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि महानता वंश से नहीं कर्म और साहस से बनती है। जो इतिहास बदलने का साहस रखते हैं समय भी उनके सामने सर झुकाता है।
1: तो साथियों आज हमने याद किया कुछ ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने शब्दों कला खेल और साहस से दुनिया को नई प्रेरणा दी।
0: किसी ने कविता से दिल जीते, किसी ने अभिनय से, किसी ने खेल से और किसी ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा।
1: लेकिन इन सभी में एक बात समान थी, मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर विश्वास।
0: और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, नाम वही अमर होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं।

0: तो साथियों चलिए रुक करते हैं 20 मई के कुछ खास इतिहास के पन्नों की ओर। 1498 में आज ही के दिन वास्को डा गामा केरल के कोझिकोड पहुंचे थे। यही वो सफर था जिसने इंडिया और यूरोप के बीच डायरेक्ट सी रूट खोल दिया।
1: और 1965 में कमांडर MS कोहली की अगुवाई में पहली सफल इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने इतिहास रचा।
0: 1932 में आज फ्रीडम फाइटर बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को नई पहचान दी।
1: अब बात करते हैं दुनिया की। वर्ष 1873 में लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस को ब्लू जींस का पैटर्न मिला था, यानी कि आपकी फेवरेट जींस की शुरुआत यहीं से हुई।
0: साथ ही 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ, जिसने दुनिया में मेजरमेंट्स का एक कॉमन सिस्टम शुरू किया। इसी वजह से आज वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे भी मनाया जाता है।
1: दोस्तों वर्ष 1927 में सऊदी अरबिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिली थी।
0: 1932 में एविएटर अमेलिया एयरहार्ट ने अटलांटिक ओशन सोलो क्रॉस करने के मिशन की उड़ान भरी थी।
1: और वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस से अपनी पहली तस्वीर भेजी। और दोस्तों अब रुक करते हैं खेल जगत की तेज रफ्तार खबरों की ओर।
0: और शुरुआत करते हैं एक ऐसे खेल से जहां दिमाग की चाल जीत तय करती है।
1: दोस्तों प्रतिष्ठित फिफ्थ एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 21 से 27 जून तक गोवा में आयोजित होने वाली है।
0: और इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान समेत 20 से ज्यादा देशों की टीमें हिस्सा लेंगी।
1: दोस्तों भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 20 मेडल्स जीत चुका है और इस बार भी हमारी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब बात करते हैं कल हुए IPL के मैच की। दोस्तों कल मैच था राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स को दिया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए और 7 विकेट से जीत दर्ज की। और आज का जो मैच है वो KKR और MI के बीच कोलकाता में शाम 7:30 पर होने वाला है।
0: और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो NSE 23,659 पॉइंट्स पर बंद हुआ 0.17% की बढ़त के साथ। वहीं सेंसेक्स आज 75,318 पॉइंट्स पर बंद हुआ 0.16% की बढ़त के साथ। वहीं $1 आज 96.79 रुपीस पर दिखा।
1: और इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यही वादा है आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा और मेरे साथी वंदना, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम मीडियम वेव 266 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, समाचारों के प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़।

सांवरिया, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शान को। अगला नगमा फिल्म म्यूजिक में हमने आपके लिए चुना है, फिल्म है औजार।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना रामलीला में, और इस दो गाने के साथ ही आज का फिल्म म्यूजिक का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 बजने ही वाले हैं। कुछ पलों में जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और

0: जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000

0: भीषण गर्मी और लू की चपेट में अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी 2 घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में हैं। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द

0: आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली सीएसएमसी बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दत्त ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज

0: किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगरपालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रुपए महीने का लाभ मिल सकता है।

0: विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो कि पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवनो जरूरी है। पीठ कहो कि ओ मुद्दों सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। इविच प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावन रो काम चाल रो है। पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रहा है। ये डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए असामाजिक तत्वां रा शामिल भेवन रीठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री 2 घटनावां शामिल है। पाली रा अमरपुरा स्टेशन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बा री कोशिश करण रीठा पड़ी है, जिन कारण वहां डिब्बा माए लाई लाग गई ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना उसरू भेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रा तहत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारे गांव रो पैदल दौरों कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे माए जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रह मुजब

0: देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सा गए पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी री उपलब्धता रा बारा में मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी। इन बीच प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों की तुलना में भारत में हालात बेहतर और काबू में है। वह जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में अब बच्चा ने उपमारी ठौड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इनना बेगोई आंगनबाड़िया में बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन में शामिल करन बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में करीब 5,000 नुआ मकान बनाया चावेला। इन तहत हर पात्र जना ने खुद रो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग में अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवन जावन री ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश से जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं क्यूआर कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवारी शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर में आई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं वेला जिनू ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानियों छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब 8 टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखर ठोना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच है जबकि रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जिनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोना पीवन रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजन सा।

0: चेत आयो है। ए विच लाडला 24 घंटा में श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य में सबू गर्म ठोर रहो। बीकानेर में रात्रि वगत सबू बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में बत्तों बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। राजधानी जयपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। ए बीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी थोड़ा छाया रा प्रबंध करी चिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो चाहियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीस।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजा रा इलाज जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करण रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी ची। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेतीबाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा में जानकारी दीनी। खेतीबाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखण सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊं पेश करण री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स AI आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणियां माई फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानों पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो कि मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू फैला। और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार,
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ग्रामीण परिवार सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम।
1: राम राम गायत्री भाई साहब, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम हुनवा वाला सगला किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम राम, राम, राम सा।
0: देखो रामा भाई, कार्यक्रम रो टेम व्यो किसान भाइयों वास्ते भांत भांति जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर वेहा सा। और किसान भाई भी नितना वादन नवी नवी जानकारियां हुणे नवाचार रे बारे में जानकारी आपा भी देवा हा सा। कृषि विशेषज्ञ भी अपने पधारे है और नवी नवी जानकारियां देवे। तो रामा भाई, आ चौपाल री बात में आप कई लेन आया हो सा?
1: आज लेन आया समन्वित कृषि प्रणाली कई है और वो किस तरह काम करें, तो वहीं पे आज किसान भाई ने आपको बताऊंगा सा।
0: बिल्कुल सा, समन्वित कृषि प्रणाली यानी यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक खेती रो तरीको है। अड़मे ने किसान भाई फसल रो उत्पादन तो करी है, लारे लारे फसल उत्पादन रे साथ लारे लारे पशुपालन भी किसान भाई कर सके, डेयरी रो काम भी कर सके, मछली पालन भी करे, मुर्गी पालन है, बागवानी है, मधुमक्खी पालन है। अत्रा हारा जो खेती बाड़ी जुड़िया लगा जो उद्यम है अड़ा ने एक लारे जोड़न कर सके है। और अणी प्रणाली रो मुख्य उद्देश्य यो वेवे कि मान लो एक उद्यम रा वचा लगा बेकार जो भी अपशिष्ट अगर निकल रहे है, वंडो उपयोग दूसरा उद्यम रे वास्ते खाद रे रूप में या पचे भोजन रे रूप में इस्तेमाल करनो है, ताकि किसान भाइयारी जो खेतीबाड़ी में लागवा वाली जो लागत है वह कम वेवे और कमाई जो है वह साल भर भी वणी लकी रहे सर।
1: बिल्कुल सर, अणी प्रणाली में जमीन रे आकार और संसाधनों रे अनुसार जो घटक है वंडे पे बात करेंगा, तो देखो तो एक है फसलों उत्पादन, अणी में अनाज है, दाला है, तिलहन है जैसी अणी मुख्य फसलारी खेती है। दूसरों पशुपालन डेयरी, वणी में गाय है, भैंस है, बकरी पालन है, जिन्हों दूध बिक्री और खेतार लिए गोबर खाद भी मिले हैं। अंडे अलावा देखो बागवानी भी है अणी में, वणी में सब्जियां हैं, फल फूल की खेती भी आप कर सका सर।
0: बिल्कुल सा, केवारो मतलब यो से कि किसान भाई खेती बाड़ी करे है, फसल रो उत्पादन करे है, पर लारे लारे अगर किसान भाई बागवानी भी करे है, पशुपालन भी करे है, और पशुपालन संबंधित जो डेयरी है वन में ने भी दूध री बिक्री करे है, खेता में ने गोबर री खाद जो है वो जो पशुपालन बनाने गोबर मिले है तो वनडो खाद रे रूप में ने खेता में उपयोग करे है। लारे लारे से अगर किसान भाई मछली पालन भी कर सके, तो खेत में नहीं अगर एक छोटो सो तालाब बने इन वन में मछली रो पालन करे तो यो एक अतिरिक्त आय रो साधन भी बन सके सर।
1: बिल्कुल सर, अंडे साथ साथ देखो आप कुक्कुट पालन है, जिस तरह वणी में मुर्गी है, बत्तख पालन है, जनों का ये कि अंडा भी और मांस रो उत्पादन भी है, मधुमक्खी पालन है, वणी में फसलर है, परागण बढ़ावा लिए शहद उत्पादन रे लिए। अंडे अलावा देखो वर्मी कंपोस्ट भी आप कह सका, वणी में पशुआर गोबर और फसल रे अवशेष केचुआ खाद तैयार करने अच्छी आप इनकम भी ले सका सर।
0: बिल्कुल सा, अबानो आप जिस तरह बतायो कि जो ठंडा चौपाऊ जो गोबर मिले है और जो भी फसल रा अवशेष वे वणु खाद तैयार करे, वणी खाद ने आपा वर्मी कंपोस्ट भी कहवा सा। यो वर्मी कंपोस्ट जो है वो जैविक खेती ने भी बढ़ावो देवे है, जैविक खाद तैयार वेवे अणु, और जैविक खेती करवो किसान भाया जो है वणा ने कणी भी तरीका रो रसायन रो उपयोग नहीं करनो पड़े। और अगर किसान भाई रसायन रो उपयोग नहीं करेगा तो प्रकृति ने तो बढ़िया राख सकेगा, लारे लारे वे शुद्ध और बढ़िया भोजन जो है अपना तक पहुंच ही सकेगा।
1: बिल्कुल सा, अब ये देखो समन्वित कृषि प्रणाली के मुख्य लाभ कई कई है, वह भी किसान भाई ने बताओ। देखो कि अणी में साल भर लगातार अपनी आमदनी चलती रहे, फसल खराब होने वाली स्थिति में भी पशुपालन डेयरी या मुर्गी पालन किसान भाई रे आय में कमी नहीं आवे और रुके भी नहीं सा।
0: बिल्कुल सा, अगर मान लो लागत में भी भारी कमी आवे, एक घटक रो जो कचरो है वो दूसरा रे वास्ते इनपुट बन सके है, जिस तरह बाजार रो महंगी खाद लावे या पचे चारा खरीदवारे जरूरत कम वे जावे। अगर मान लो किसान भाई खेतीबाड़ी तो कर रहा है, लारे लारे ढांडा चोपा भी राख रहा है, तो वणु मिलवा वालों जो उत्पादन है जिस तरह गोबर मिले तो वणु खाद तैयार कर सके, तो आनी तरीको लागत जो भी खेतीबाड़ी रे लाग रही है वन में भारी कमी लय सके सा।
1: बिल्कुल सा, अन्य अलावा देखो रोजगार का अवसर भी मिले कि खेत में परिवार सदस्य ने साल भर रोजगार मिलते रहे। अंडे अलावा देखो पर्यावरण और भूमि रो संरक्षण भी हुए, अणी में रासायनिक उर्वरक रो उपयोग कम वे, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और पर्यावरण सुरक्षित भी रहे सर।
0: और किसान भाई जो है परिवार ने अपने खेत में शुद्ध अनाज, साग सब्जियां, फल दूध और जो भी किसान भाई जो भी और दूसरा भी फल जो है अलग अलग तरीका रा अलग अलग तरीका री साग सब्जियां है अनारो उत्पादन कर सके है, तो यह जो समन्वित कृषि प्रणाली है वह किसान भाई रे वास्ते बहुत ही लाभदायक है। और यो काम किस तरह करे वंडी भी जानकारी करावा कि यह प्रणाली जो है एक

0: तरह काम करे। खेता महीने जो फसल रा अवशेष है, जिस तरह की खेती बाड़ी कर रहा है किसान भाई, तो भंडारा जो भी अवशिष्ट जो निकल रहे है, अवशेष जो है, जिस तरह की भूसो है, रूखड़ा री पत्तियां है, तो वे बचे तो वे सब जो है, अगर वे बनारे पशुपालन भी लारे लारे कर रहा है, तो पशु आने चारा रे रूप में काम आई सके सा।
1: बिल्कुल सर, पशु वाली बात करें तो पशुओं मिलवा वालों गोबर बायोगैस बनाने में काम आई सके, वर्मी कंपोस्ट जिस तरह केचुआ खाद तैयार करवा वास्ते भी काम आई सके सर।
0: और अणि जैविक खाद ने वापस किसान भाई खेता में ने बागवानी में ने डाल सके है, जणू किसान भाई रो जो रासायनिक खाद रो खर्चो है वो बची जावे है। और जो भी अगर किसान भाई मुर्गी पालन कर रहा है, तो वनारा मलमूत्रों ने मछली रा तालाब में भी वे डाल सके, जो मछलियाँ रे वास्ते भोजन रो काम करे है। और तालाब रे पोषक तत्वों भरपूर पानी रो उपयोग जो है, वे किसान भाई फसलारी सिंचाई कर सके। तो कहवारो मतलब यो से कि जो समन्वित कृषि प्रणाली यानी खेतीबाड़ी रे लारे लारे जो भी किसान भाई पशुपालन है, डेयरी है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, बागवानी है, ये सब करण अतिरिक्त आय रो साधन बने सके। और अतिरिक्त आय अगर किसान भाईयारे वेगा तो चारी मेर खुशहाली ही खुशहाली वेगा। तो क्यों नहीं किसान भाईयारी खुशहाली ने और भी दोगुनी करा। और हुणा मा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
1: हाँ सर।

0: देखो गायत्री भाई साहब बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुनियो। और अभी देखो प्रोग्राम ने आगे बढ़ा हुआ और अपा किसान भाइयों ने मौसम की जानकारी भी दे दें ताकि आवलो टाइम एक दो दिन किस तरह रहेगा ताकि वे आराम अपनों काम कर सके सर।
1: मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे आवा वाला दना महीने मौसम शुष्क रेवारी संभावना है। हवारी जो गति है वह 2-6 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगु दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम चलेगा सा। और अधिकतम जो तापमान है वो 42-44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो तापमान है वो 25-27 डिग्री सेल्सियस रेवारे लारे लारे। सापेक्ष आर्द्रता न्यूनतम 22-24% और अधिकतम जो आर्द्रता है वह 9-12% रेवारी संभावना है।
0: हाँ सर, किसान भाइयों ने संबंधी जानकारी भी देता कि मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पत्तियां ने बीच में सूखी घास और फसल रे अवशेष का उपयोग करना है। गर्म हवा में बचाव रे लिए खेती में सीमांत में ट्रिप्स रो और जूट की जाली लगाई देनी चाहिए सर।
1: गाँव री जटे बात करा तो गाँव री फसल में अनाज रे भंडारण में राखवो पहला भंडार घर री हव तरीको सफाई करनी है और अनाज ने हव तरीको हुकाई भी लेनो है। कूड़ा कचरा ने जले देनो है या दबे नष्ट कर देनो है। दाणा री जो नमी है वह 12% तो ज़्यादा नहीं वेणी छावे है। भंडार घर री छत दीवार और फर्श पे एक भाग मेलाथियान 50 ईसी रो 100 भाग पानी में मिलाइन छिड़काव करनो है। अगर पुरानी बोरी

0: क्यों करनी पड़े तो वड़ा ने भी एक भाग मेलाथियान और 100 भाग पानी ना घोल में 10 मिनट तक भिगोई छाया में हुकई लेनी है सा।
1: बिल्कुल सा बात करें आप मूंगरी तो एनी टाइम सिंचाई के लिए अन्य समय मूंगरी फसल फूल आवारी कगार पे है तो अन्य अवस्था में या तो अन्य अवस्था में नमी की कमी में पैदावार घट सकें अन्य लिए सिंचाई अपने जारी रखनी है और गर्म मौसम में थ्रिप्स रो प्रयोग प्रकोप बढ़ जावे तो अन्य लिए नियमित रूप निगरानी भी रखनी है सर।
0: कपास री जटे बात करा तो कपास महीने अणी सप्ताह महीने किसान भाई कपास री बुवाई रे वास्ते खेता ने तैयार कर सके और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज जो है वही किसान भाइया ने खरीदना है। बेल वाली साग सब्जियां री बात करा तो मिट्टी महीने पर्याप्त नमी बनाई रखवा रे वास्ते फसल ने नियमित रूप हल्की सिंचाई देनी है। बेला ने सहारो देनो है। फलारी मक्खिया या पाउडरी मिलड्यू री नियमित रूप निगरानी करनी है और आवश्यकता रे अनुसार कीटनाशकों भी छिड़काव करना है
1: हाँ
0: सर।
1: सा मूंगफली की बात करें तो खरपतवार प्रकोप ने नियंत्रित करवाने के लिए उचित पैकिंग के लिए इंटरकल्चरल ऑपरेशन और हाथ में गुड़ाई रो काम आवश्यक कर लेना चाहिए सर।
0: भिंडी री बात करा तो भिंडी मैंने यदि फलारो आकार 5 इंच लंबो वेग्यो है तो तुड़ाई कर लेनी है। तुड़ाई रे बाद मैंने भिंडी री फसल मैंने 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर री दर यूरिया डालनो है और गर्मियारा अबाणु ये जो गर्मियारो मौसम चल रो है अणि गर्मियारा महीना मैंने हरा चारा री जो कमी है वह काफ़ी आम बात है। अणि वास्ते हरा चारा वाली फसला जिस तरह की ज्वार है बाजरो है मक्का और लोबिया अणारी बुवाई जो है अणि टाइम पे किसान भाइया ने करनी छावे सा।
1: बिल्कुल सर तो देखो या तो ये मौसम की जानकारी और सामान्य की जानकारी और अब एक किसान भाई ने होना वहाँ एक और बढ़िया सो राजस्थानी लोक संगीत।
0: हाँ सर।

0: जो है वो भारत रो नागरिक बन छवे। आवेदक के पास अपनो खुद रो पक्को घर और सोलर पैनल लिए खाली छत बनी छवे, घर में एक वैध बिजली कनेक्शन बनो छवे और परिवार में पहला कहीं अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना रो लाभ नहीं लियो है, वड़ा नहीं हो मिलेगा सा।
1: किसान भाई ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में किस तरह कर सके मंडा तरीका रही बात भी बतावा कि आवेदन जो है वो केवल आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल रे माध्यम स्वीकार कियो जावे है, रजिस्ट्रेशन रे वास्ते पोर्टल पे जानो है किसान भाई ने, और अपना राज्य बिजली वितरण कंपनी उपभोक्ता नंबर मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना पंजीकरण करना है सा।
0: बिल्कुल सा, अकाउंट लॉगिन करवाने लिए रूप टॉप सोलर के लिए अप्लाई करना है और आपने बिजली की जो कंपनी है वंडी अपनी तकनीक जांच के लिए मंजूरी देगा सा।
1: बिल्कुल सा, वंडे बाद में ने मंजूरी मिलवारे बाद में ने अपना क्षेत्र रा कणी भी सरकारी रजिस्टर्ड वेंडर जो है वे सोलर पैनल लगवाएगा, और पैनल लगवारे बाद में ने पोर्टल पे नेट मीटर लगावारे वास्ते भी अप्लाई कर सको सा।
0: बिल्कुल सर, अंडे लिए आपने एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि अधिकारी आई ने सिस्टम की पूरी जांच करेगा और चालू व्यवहार के बाद आपने एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा सर।
1: और सब्सिडी रो भुगतान भी वेगा पोर्टल पे अपनो जो बैंक खातो है विवरण है कैंसल चेक जो है वो सब अपलोड करनो है। आवेदन पूरा व्यवहार है 15 दिन रे अंदर महीने महीने सब्सिडी सीधा अपने खाता में ने आई जाएगा, और सब्सिडी री जो दरा ही मैं अपनो बताई ही कि जिस तरह 300 यूनिट अगर ज़्यादा रही सब्सिडी है अगर आप सोलर लगवा रहा तो वनडे वास्ते अधिकतम 78,000 जो है वह सरकारी सब्सिडी मिलेगा, और अगर 150-300 यूनिट रे वच में लगे रहा तो 60,000-78,000 सब्सिडी, और अगर 150 यूनिट तक अगर सोलर लगवा रहा यानी 1-2 किलोवाट रो लगवा रहा तो 30,000-60,000 सब्सिडी किसान भाइया ने मिलेगा सा।
0: बिल्कुल सा, अणि योजना रो मुख्य लाभ भी बता दें। देखो एक तो अणि में लोन बिल्कुल ही सस्तो है, 3 किलोवाट तक रो सिस्टम रे लिए बिना कहीं गारंटी रो मात्र 7% ही कम ब्याज दर पे बैंक लोन सुविधा भी उपलब्ध है।
1: और किसान भाई जो भी 300 यूनिट प्रति माह रे बाद में भी अगर बची लगी अतिरिक्त बिजली है वनडे वापस ग्रिड ने वेचन भी पैसों कमाई सके तो यो एक अतिरिक्त कमाई रो साधन भी बन सके है, और सोलर पैनल रो रख रखाव जो है वो भी बेहद आसान वेवे है, यो 20-25 साल तक बिजली देते रहे है, तो यो तो सोलर पैनल यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है वह जितना भी किसान भाई है वनारे वास्ते बहुत ही फायदेमंद है, और अणु जो भी बिजली री बचत है बिजली रा बिल में ने जो आवा वाली जो बचत है वह किसान भाई रे वास्ते बहुत ही बढ़िया रहेगा सा।
0: बिल्कुल सर, तो देखो यह तो बहुत ही बढ़िया योजना है और किसान भाई ने अन्य योजना रो लाभ उठानी चाहिए सर। और अभी देखो किसान भाई ने एक और बढ़िया सो राजस्थानी लोक गीत सुनाओ सर।

मोर छड़ी थारा हाथा में हीरो चमके माथा में, घणो ही प्यारो सो राजस्थानी जो श्याम धणी रो जो भजन है वो किसान भाया ने हुणायो सा। कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाया ने जानकारी करावा कि

0: तो रामाभाई किसान भैया ने मूमल रो प्यारो सो राजस्थानी गीत हुणायो सा। कार्यक्रम में आपा और जानकारी लेने आया हाँ कि उर्वरक जो किसान भाई उपयोग में लेवे वंडो संतुलित प्रयोग किस तरह लेनो है, क्योंकि फसल ने ज़्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण री आवश्यकता वेवे। तो उर्वरक रो अगर असंतुलित और अनुमान रे आधार पे अगर उपयोग गुणवत्ता और मिट्टी तीना ने नुकसान पहुंचाई सके, अणि वास्ते उर्वरक रो संतुलित प्रयोग किसान भैया ने करनो छावे सा।
1: देखो, असंतुलित उर्वरक जो नुकसान है, वनडी बात करें तो देखो पत्तियाँ हरी हुई जावे, लेकिन वनारी जड़ा भी कमज़ोर पड़ जावे, फूल और दाना बनवाने की क्षमता भी घट जावे, फसल की कीट और रोग री प्रति संवेदनशील भी हुई जावे, और उत्पादन की बात करें या गुणवत्ता की बात करें तो मिट्टी री सेहत के लिए भी बुरा असर पड़े और लागत भी बढ़े और वनियों का ये कि लाभ भी घटे ऐसा।
0: तो किसान भैया ने शुरुआत में ने मृदारो परीक्षण करवाणो है, क्योंकि हर एक खेत री मिट्टी अलग अलग वेवे है। बिना जांच रे उर्वरक डालनो पयो भी खर्च करनो है और लाभ भी नहीं वेवे। तो मिट्टी रो जो परीक्षण है वो किसान भैया ने कराणो, क्योंकि अणु यो पतो चालेगा कि कणी पोषक तत्व री कमी है, कंडी मात्रा देनी है, उर्वरक रो उपयोग जो है वो क्षमता बढ़ावे है, लागत घटावे और लाभ भी बढ़े है सा।
1: बिल्कुल सा, सही और संतुलित पोषण और ज़्यादा नहीं और संतुलित जरूरी है। अणि लिए अपने देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, अनारो सही संयोजन अपने रखना है ऐसा। अंडे अलावा देखो ज़्यादा यूरिया रो भी इस्तेमाल नहीं करना है ऐसा।
0: बिल्कुल सा, क्योंकि कतरी बार संतुलित अगर आपा उर्वरक रो उपयोग करांगा तो अणु जड़ा भी मजबूत वेगा, पौधों भी स्वस्थ वेगा, फूल और दाना रो भराव भी हो वेगा, रोग और कीटा रो असर कम वेगा, हो उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वेगा। तो किसान भाइया ने संतुलित और सही उर्वरक रो प्रयोग करनो है सा।
1: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो सही समय पे और सही विधि द्वारा भी अपने ये अणा उर्वरक का रो प्रयोग करना है। देखो बात करें आप नाइट्रोजन री, तो अणा ने देखो एक तिहाई बुआई बुआई रे समय अपने

0: उपयोग में करना है। अंडे अलावा 1/3 भाग बढ़तवार जो 335 दंड महीने और अंडे बाद 1/3 बालिया निकल पहला अपने इस्तेमाल करना है। ऐसा
1: फास्फोरस रो भी सही तरीका उपयोग करना है। फास्फोरस जो है वह उर्वरक जड़ारे पास में ने देना है क्योंकि पूरा खेत में फैलावा या कड़ी फसल में देवा नुकसान वे है तो जटे भी जड़ा है तो वंडो उपयोग किसान भाइयों ने वनारे फास्फोरस रो सही उपयोग करवा में करना है। लारे लारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी जो है उर्वरक में महत्वपूर्ण वे है। जिस तरह जिंक है, अगर जिंक री अगर कमी वेगा तो पत्तियाँ पीली पड़ जाएगा, वृद्धि रुक जाएगा। और बोरोन है, बोरोन री कमी फूल झड़ेगा, फूलन कम वेगा। आयरन री जटे बात करा तो आयरन री कमी पत्तियाँ पीली वे जाएगा। और सल्फर री कमी प्रोटीन कम और उत्पादन घटेगा। तो आपने सूक्ष्म पोषक तत्व जतरा छावे वनारो उपयोग करनो छावे सा।
0: बिल्कुल सा। अंडे अलावा देखो एकीकृत पोषण प्रबंधन पे भी आपने ध्यान रखो, जिस तरह रासायनिक है या जैविक है, वनियों को वेगा कि अपनी मिट्टी की सेहत भी वनी वेगा और स्थायी उत्पादन भी अपने मिलेगा सा।
1: जिस तरह गोबर री खाद है, हरी खाद है, फसल रो अवशेष है और रासायनिक अगर उर्वरक उपयोग में ले रहा तो वनडे संतुलित मात्रा में उपयोग में लेनो है क्योंकि अणु मिट्टी में ने कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, मिट्टी री संरचना, पानी धारण करवारी क्षमता और सूक्ष्म जीव सक्रियता बढ़ेगा, उर्वरक रो प्रभाव बेहतर वेगा और उपयोग क्षमता भी बढ़ेगा सा।
0: बिल्कुल सा। देखो किसान भाई ने याद रखवा वाली मुख्य जो खास खास बता है वह भी आप बता कि देखो मृदा मिट्टी परीक्षण के आधार पर अपने उर्वरक की मात्रा तय करनी है। नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटाश है अना जो संतुलित उपयोग करना है ऐसा। नाइट्रोजन री जो मात्रा है वह विभाजित खुराक में देनी है अपने। फास्फोरस ने जड़ारे पास में अपने देना है और सूक्ष्म पोषक तत्व री समय पे अपने पूर्ति करनी है। जैविक स्रोतरा ने खेत में मिलाऊँ अपनानो छावे और अंडे वाला सही समय और सही विधि और सही मात्रा में आपने ये अगर आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप मिलेगा सा।
1: तो आपा तो यो इसका किसान भाइयों ने कि उर्वरक जो है वे खेती रो इंजन है, अंडे सही मात्रा में और संतुलन में ने चलावनो है, लाभ ज़्यादा मिलेगा और मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहेगा सा। और कम लागत, सही पोषण, स्वस्थ मिट्टी और अधिक लाभ या टिकाऊ और लाभकारी खेती रो असली है आधार। तो किसान भाइयों ने सही और संतुलित जो भी उर्वरक रहे है वनारो उपयोग करनो है, अपनी खेतीबाड़ी में लागवा वाली जो उत्पादन है बढ़वा वालो उत्पादन है, वना ने बढ़ावनो है, लागवा वाली लागत ने कम करनो है और अगर उत्पादन हाँचो वेगा तो चारी मेर खुशिया ही खुशिया वेगा। तो जाता जाता क्यों नहीं किसान भाई की खुशी भी दुगुनी करा। और हुनावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
0: हाँ सर।

विधाता। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को वंश। अगली फिल्म और आवाज इस बार लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

ये खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना, उम्र कैदी फिल्म का नगमा था मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वासना फिल्म से, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़।

आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर से 1125 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र और फिल्म म्यूजिक के इस प्रोग्राम में अगला नगमा जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म विजय पथ से। अलीशा चिनोई की आवाज़।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, यानी कि समाचार संध्या का अंक, और उसके बाद न्यूज एट नाइट रात्रि 9 बजे। दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक पे राष्ट्रमंडल

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को

0: मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।

0: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्या के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.

0: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defense Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defense Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
3: भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं.
4: इंडियाज पॉलिसी टुडे इज नॉट रिएक्टिव बट

एक गज़ल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में, अगली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ पंकज उदास की है।

0: पंकज उदास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है, जिसे हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748

0: में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत

0: मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया।

0: साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने इन देशों की

0: आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: डॉक्टर अंक्रोमा हैड सेड एंड आई कोट, आई एम नॉट अफ्रीकन बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका बट बिकॉज अफ्रीका वॉज बोर्न इन मी। इन द सेम वे इंडिया कैरी अफ्रीका इन इट्स हार्ट। इंडिया एंड अफ्रीका शेयर अ ड्रीम वेर एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज, वेर एवरी वॉइस इज हर्ड, वेर नेशंस राइज टूगेदर नॉट अ पार्ट। लेट अस बिल्ड अ पार्टनरशिप नॉट ओनली फॉर टूडे बट फॉर जनरेशन टू कम।
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत के ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो

0: था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि ये एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन उन्होंने इसको मदर

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन, राग थी मियां की तोड़ी। आइए अगले क्रम में आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, राग यमन और सितार वादक हैं नरेश कुमार वयार।

0: सितार वादन अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे नरेश कुमार भैया, राग थी यमन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान

भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद